FM-Band 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज बुधवार शक संवत 1948 की अश्विन मास की पहली तिथि तदनुसार 23 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आज की हमारी प्रातकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का अभिनंदन और सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्माकुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के द्वारा 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें

0: हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। विषय रहेगा निर्मल।

निर्मल यानी पाक साफ एवं स्वच्छ। बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, तभी तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चों का यही सच्चापन कोरापन मन की निर्मलता कहलाती है। छल कपट द्वेष ईर्ष्या अहंकार इन सबसे रहित मन निर्मल होता है, बिल्कुल ईश्वर तुल्य। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार की आपाधापी में संघर्ष शुरू होने लगता है, हमारे अंदर कामनाएं जागने लगती हैं, हम उनकी पूर्ति हेतु शीघ्रता शीघ्र प्रयास करते हैं, चाहे उचित हो या अनुचित। यहीं से विकार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और ये विकार मानव समाज के भाईचारे को कई प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गंदगी हमें पसंद नहीं। हम घर को भी प्रातः साफ करते हैं तथा स्नान आदि कर स्वयं को भी, क्योंकि सफाई अंततो गत्वा सुंदरता में प्रकट होती है। इसी तरह जब मन की निर्मलता हमारी संस्कार में आती है, तब मानवीय रिश्तों के व्यवहार संस्कार में सौंदर्य को प्रकट करती है। अतः मन की निर्मलता हेतु हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। कोई दुर्गुण मन में प्रवेश करे, इससे पूर्व ही हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम अपने मन को एक बालक की तरह निर्मल बना सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए जो हमारी कमियों को बता हमें सचेत करता रहे। तभी तो कहा जाता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रशंसा की भूख प्राय सभी में होती है, प्रशंसा कब चापलूसी में बदल जाए पता नहीं चलता। अतः इस प्रकार की व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द होंगे तो हमारे मन की निर्मलता कब कलुषता में बदल जाए पता नहीं चलेगा। अतः अपने आलोचकों को प्यार से संग रखना आवश्यक है। निर्मल हृदय वाले अपने आसपास के दीन दुखी जनों को सहयोगी बनाकर चलते हैं। अतः संसार में सच्चे मन निर्मल हृदय के व्यक्ति ही संस्कार एवं संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी भागीदार होते हैं। अतः हमें हमारे हृदय को निर्मल रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन और विषय था निर्मल। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान, आज का एपिसोड 197।

राम सखा निषादराज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषादराज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के प्रातःकालीन और सायंकालीन सभाओं की कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर यानी प्रातः 6:45 पर खेती ने बात, प्रातः 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे राधे श्याम और साथियों की आवाज में गाए भजन। प्रातः 7:20 पर वातायन, वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कहानी संस्कारी जानवर, कहानीकार नवीन कोठारी।

हफ्ता 7:30 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम, प्रातः 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। प्रातः 8:15 का समय उद्घोषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिन से। आज का विषय है साथी। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर सुगम संगीत। दोपहरा सुगम संगीत का आनंद लेंगे 11 बजे। प्रातः 9:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 पर फिल्म संगीत और 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

यह तो थी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम की जानकारी। अब एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 6:30 पर रोजाना की तरह हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी जयपुर केंद्र से और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से। शाम 7:00 का समय वाकड़ी कार्यक्रम बैरानी बात। शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती नी बात।
1: कार्यक्रम सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों, सुमासाना दाड़ा है, पानी पड़ी रुतो को है, और आपड़ो जे पशुधन है एना बल्ले आना सुमासाना दाड़ा में जे आ हरी जे घास है, आपड़ा जे लीली सार है, एना बल्ले आपने खेतर में जाव पड़े है ने सार वाड़ी ने आपड़ा पशुधन ने खबड़ा बल्ले लाबो पड़े है। किसान भाइयों, हरो चारो अगर आना मौसम में आपड़ो पशु खाई रू है तो इन्हें खावा में भी ठीक लगी रू है ने इन जे दूध नी उत्पादन नी मात्रा है इन्हें भी आज हरो चारो है ये बढ़ोतरी करे है। तो अटले आपने अच्छू दूध नु उत्पादन लेवा बल्ले आपड़ा पशुधन ने हरो चारो खावड़ा बोजुए और किसान अन्न में लागेला है। पर किसान भाइयों, अपने हरा चारा बल्ले किसान खेतरे जाए है या जे भी पशुपालक भाई अपड़ा खेतरे जी सारो वाड़ी लावे है तो अवड़े किम के सुमासाना दाड़ा में आपड़ा देखे कि भाई आ सब जगह है पानी नी वजह थकी घास उगी गई थकी है, झाड़ियां उगी गई थकी है, आपड़ी जे फसलें हैं ई मोटी थे गई थकी है, तो सब जगह एटली सार एटली झाड़िए ने एटली फसल नी जे ऊंचाई है या बढ़वार है के इन खातिर घना वक्त कयू अगर जहरीलू जीव जानवर अपना खेतर में है के हेड़े है के नेक में है या कई झाड़ी में हंपायरू तको है या दबेलो तको है ती आपने एकदम देगी दिखा ने। तो किसान भाइयों, आपने अवड़े सुमासा में खेतरे अगर सार लेवा जा तो आपने ध्यान रखू है कि जया भी खेतरे ज एक कई लाकड़ लेव लांबो या फिर एवं कई आप सीज राखी जेने की मैं सारा ने मैं आपने भर सार लेवा बल्ले एने पहले ये झाड़िया है या जे फसल है इने अपने लाकड़ा थे की बढ़िया दिगी लो थोड़ा साफ करीने के कई खेतर में कई जानवर तने थी कई जीव तने थी जहरीलू और अगर होगा तो आपने ये लाकड़ा ने खड़खड़ाट थे की ये थे की सलू जागा तो इन्हें थे की कई आपने घटना ने थी के कई दुर्घटना ने थागा। तो आपने किसान भाइयों आनी बात ने ध्यान रखू है, ध्यान आनी बात भी राखू है कि अवड़े सोमासान दाड़ा मगर आप खेतरे ज तो केम के जीव जानवर नो भय है तो अटले आपने आजकल से बाजार में जे एक बूट मले लंबा लंबा घुटने तक लंबा ये आपने आज सेफ्टी शूज के ने घुटना तक लंबा लंबा जे बूट आवे एने पेरी ने जावू सुवे एने थे कि कई जहरीलू जीव जानवर होगा तो ये काटी नहीं सके डंक नहीं मारी सके ने एने थे कि आपड़ो बचाव थी सके। तो आपने आनी बात भी ध्यान रखू है और किसान भाइयों, सोमासा ना दाड़ा है सार लेवा बोले खेतर जावूज पड़े है ने आपड़े सब तरह की सावधानी राख ने चौकन ना एने बाद भी मान लो अगर कया भाई ने अगर कयू जानवर जीव जानवर जहरीलू कई कड़ी खा है तो आपने घबराबो ने वना देर करे तरत ने तरत आपने अस्पताल सलो जाव जुए डॉक्टर ने देखाड़ लेव जुए अट्ले वना देर करी जेवो एम लगे कि भाई आने कहे कि आपने जहरीले जीवी कई कड़ी खाई गयु है तो तरत ने तरत आपने हॉस्पिटल जाव जुए ने डॉक्टर ने देखाड़ देव जुए आण में अगर किसान भाई आप लापरवाही करेंगा देरी करेंगा तो एने थे कि आपने नुकसान थी सके। तो आपने आ ध्यान रखू है कि वना देरी करे वना कई लापरवाही करे हीदू हट आपने अस्पताल में जई ने अपने स्वास्थ्य नो बचाव ना जे डॉक्टर कहे नहीं सकते कि आपड़ा उपचार चालू कर देव जुए। किसान भाइयों, एने अलावा भी केम के आ सुमासा ना दाड़ है तो घना वक्त आप देख के सब जगह केम के काई जमेली रहे घना जगह पानी रूकेलो रहे तो एनी वजह थे कि आपने खबर भी नहीं रहे ने आपड़ो जो पोग है ई खसकी जा तो ई पोग खसकवा थे कि आपने है के माता में लागी सके हाथ पैर में चोट लागी सके कमर में लागी सके तो अजय आ काई जमी जा है एने वजह थे कि आपने फिसली ने पड़वा थकी आपड़ो शरीर ने के चोट लागी सके आपन चोटग्रस्त थी सके तो हेणवा सालवा में भी आपने खास ध्यान रखो है कि सोमासा ने दाड़ा में जे भी काई अगर एम जमी गई होगा तो आपने थे कि जाओ ने मान लो अगर कैक है वो तो आपने पोग है ये मजबूत मेनवज हुए ने आपने असल पोगनी पकड़ बनी जाए इन बाद आपने गाड़ी कदम बड़ा बज हुए तो आनी बात भी ध्यान रखो पड़े क्योंकि जल्दी करवा जो हड़ी करवा जो ने प्लो काई है या जे सीकुण थी गयु है एवं फिजली जो एवं जगह अगर आपको पोग पड़ी जाए तो पासो एने थे कि भी आपने मोटी दुर्घटना थी जाए तो चोट पहुंची सके तो आनी बात भी ध्यान रखू है। तो आ कुछ छोटी छोटी बातें हैं।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: अब क्या सुनते हैं राधेश्याम और रामचंद्र बोल की आवाज में आदिवासी लोक भजन आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं संस्कारी जानवर नवीन कोठारी से।
1: मणिरा कलाकार और जानवर पूरी तरह से निपुण हा। आपना कणी काम में चूकता नहीं हा। एक शहर में अनि सर्कस ने चालता थका पूरा चार महीना वे गया पण अबार तई हाउसफुल चाल रहे हो। सर्कस वाला ने दो महीना और टाइम बढ़ावनो पड़ियो। अबे सर्कस दूजा शहर में जा रियो हो, सगलो सामान बांध रियो हो और अगले दिन रवाना वेवारो टाइम हो। थोड़ा जानवर तो जो आपस में गहरा दोस्त था वना सिखाबाजी की थी। ये दोस्त था शेर, वांदरो, मिट्टू, हाथी और खरगोशियो। ये पांच ही गहरा दोस्त था। सर्कस वाला अणा ने खावा पीवा ने तो पूरो देता पण अणारो मन वठे नहीं लागतो हो। ये खुला जंगल में स्वतंत्रतारो जीवन बिताणो छावता। अणा या सिखाबाजी की थी कि यदि आपानी गाड़ियां जंगल रे मैनू गुजरेगा तो किस तरह भी बाड़ने भाग जावांगा। भी परेशान हा कि आपानो पिंजरो खोलेगा कौन। घणो दिमाग लगाया बाद खरगोशो बोलियो, मारो एक बाल्डो दोस्त है ऊंदरो, जो भड़ेरा मैदान में बिल वणीने रहवे। वो मारा सू रोज राते मिलवा आवे, आज भी आवेगा, वो अपनी मदद कर सके। रात वेगी, ऊंदरो थोड़ी देर में आयो। वणी ने पतो तो हो कि वणीरो दोस्त खरगोशो काले चलो जावेगा। वो वणीरे वास्ते एक बढ़िया गुलाब रो फूल लारे लायो। पांच ही दोस्त तो वणीरी ज वाट जोई रहा हा। खरगोशे सबासू ऊंदरारो परिचय करायो और ऊंदरा ने वणारी मुसीबत रा बारा माय समझायो। ऊंदरे कियो, बस अतरी सी बात, मु मारा दोस्तारे वास्ते अत्रो आसान काम तो करी सकूं। सगला दोस्त अभी बेफिकर वही ने ऊंगवा लाग्या। जल्दी ज पांचा ने घेरी नींद आई की। नींद माय सबा ने आजादी रा सपना आई रहा हा। कदी दन उग्यो कणा नहीं पतो नहीं चाल्यो। सर्कस रा कर्मचारियां रा खां खूं और खेखारारी आवाजासू वणा सवारी नींद टूटी। आज पांची दोस्त घणा राजी हा के कदी ये गाड़ियां चाले और मां सगला आजादीरी तरफ बढ़ा। वणा ने एक एक मिनट आज एक एक घंटा ज्यू लाग रियो हो। वी सगला बेसबरीसू रवाना व्यवहारी वाट जोई रहा हा। इंतजार रो टेम खत्म वियो, गाड़ियां चालवा लागी। छह घंटा गाड़ियां चालने जंगल माए पहुंची। यदि भी घना जंगल माए पहुंची तो ऊंदरे मौको देखने वांदरारो पिंजरो खोली दीदो। अबे खरगोशो ऊंदरा ने कियो, दोस्त अबे थू वापस परो जा। वांदरारो पिंजरो थे खोली दीदो, यो माने वास्ते बहुत है, अबे तो मां सगला आजाद वे जावांगा। थारू माने उपरे यो एहसान रहेगा और मां अणी ने जीवन भर नहीं भूलूंगा। ऊंदरे सबों विदाई लीदी और जल्दी जल्दी जावा लाग्यो। पण वणी ने याद आयो के वणीरो एक दूर रो रिश्तेदार अठे पास माए रेवे। वो आज राते वणीरे अठे ज आराम करने काले घरे जावारी सोच ने वणी रिश्तेदार रे परोग्यो। बांद्रो जिस्त्रे ही आजाद वियो, वणी सगला दोस्तारा पिंजरा खोली दीदा। सगला जानवर एक लारे बांधने आई गया। पिंजरा सर्कस री गाड़िया रे सबसु पाछे बंधी तकी ही। अणी वास्ते सर्कस रा मिनक जानवर ने बांधने निकलता तका नहीं देख सक्या। वांदरो छलांग लगई ने रूखड़ा उपरे चढ़ गयो। मिट्ठू भी उड़ने रूखड़ा पे बैठ गयो। खरगोशो हाथी री पीठ उपरे जाई चढ़ियो। अबे शेर और हाथी जल्दी जल्दी सर्कस रे दूसरी दिशा आड़ी जावा लाग्या। एक जगह जाई ने मिट्ठू बोलियो, दोस्ता या जगह घनी अच्छी है। अठे जंगल रा दूजा जानवर जो आदता सु पूरा जंगली है, आपणा सु दूरा रहेगा। बणा सु आपणे खतरो है। बणा ने तो पतो भी नहीं चालेगा के आपाणी जंगल माए हा। वी ठेरिया जंगली और आपणे जंगली पणो आवे नहीं। सगला दोस्ता ने मिठुरी बात झट समझ में आईगी। जंगल रा थोड़ा सा हिस्सा में आप आपनी मर्जी माफिक जगह देखने वी रेवा लाग गया। सगला मिलने एक दूजारे खाणारो बंदोबस्त कीधो और एक साथे भोजन की दो। शेर भी मांस नहीं खावतो हो। ये पांच ही जानवर घना संस्कारी।

सरकसरा कठोर अनुशासन री वजहू भणारो जीवन संस्कारी वे गयो हो। दो दन ठीक रिया वेगा और तीसरे दन आफत आएगी। जंगल रे राजा बब्बर शेर रो एक जासूस हो काण्यो कागलो। वणी जाई ने राजा ने शिकायत की दी के एक शेर, हाथी, बांदरो, खरगोशो और मिट्ठू ये पांच ही अणी जंगल माए एक जगह ठेरिया थका है। आपारे वेता थका अणी जंगल माए दूजारी हिम्मत किस्तरे वेगी। मने भी थोड़ा अटपटा भी लाग रहा है। जासूस काण्या कागलारी बात सुन जंगल रो राजा विचलित वे गयो। वणी ने आपानो सिंहासन डोलतो नजर आयो। वो दहाड़ लगाई ने उठ खड़ो गयो। वणी कागला ने आदेश दीदो, पांचा ने मारे सामे हाजिर करो। अगर भी कणी तरेस री आनाकानी करे तो जंगल रा खतरनाक जानवरा ने लेई ने जाओ और वणा उपरे हमलो करने अणी जंगल माए सु खदेड़ दो। कागलो राजा बब्बर शेर रो आदेश लेने पांच जानवरा पांग्यो और वणा ने सुनाई दीदो। पांच ही पहला तो घबराया पण विचार करने कागला ने क्यों, मां काले सुबह जंगल रा राजा रे सामे जरूर हाजिर वे जावांगा, माने काल तकरो टेम दे दो। अबे रात भर पांच ही सोया नी, सोचता रिया के काले माणी खेर नी। कई भी वो राजा रा मुंडा आगे तो जावनो ही पड़ेगा, जो वेगा सो वेगा देखांगा। सुबह रहेगी, आज रो टेम घणो जल्दी जल्दी भाग रियो हो। पांच ही जानवर डरता थका बब्बर शेर पास जाई रहा हा। जंगल माए वनारा जो भी जाति भाई मलता अचरत सु वना ने देखता, क्योंकि वी वना सु साफ सुथरा हा और वनारी अदा अलग ही लाग रही ही। वी घना शिष्टाचार चार सु चाल रहा हा। वना राजा ही गुफा तक जाई ने खबर भी जाई। राजा री इजाजत मिली और पांच ही घूमता तका राजा रे सामे हाजिर व्या। शेर सबसु आगे हो, वो बब्बर शेर रे सामे जाते ही आगे रा दो ही पग नीचे करने माथो जमीन पे रखने नमस्कार की दो। हाथी दो ही भारी भरकम टांगा ऊपरे उबो व्यो और नमस्कार की दो। बांदरे भी हाथ जोड़िया, खरगोशे नीचे बैठने नमस्कार की दो और मिठू बोलियो, राम राम महाराज। जंगल रो राजा वणा ने देख ने संतोष से सांस ली थी और नम्रता सो पूछो, था पांच ही कौन हो और अठे कणी काम आया हो। सबरी आड़ी सु सर्कस रा शेर जवाब दीदो, मां पांच ही सर्कस सु भाग्या थका जानवर हां, आपरा जंगल माए शरण ले राखी है। माणा सु एक गलती रहेगी के मां आपरी बगैर इजाजत रे आपरा जंगल माए शरण ले गया। मां बचपन सु सर्कस माए मोटा व्या, अणी वजह सु जंगल रा कानून कायदा सु वाकिफ नी हां। माणा सु आपरा जंगल रा कणी जानवर ने कदी कणी तरेरी कठिनाई नी वेगा, अणी वातरो मां वचन देवा। अबे बब्बर शेर निश्चिंत वे गयो। वणी वणा ने आदर सु बैठवाने क्यो और खाना पीना री व्यवस्था की दी। पांच ही दोस्त रे अबे जान में जान आई। पहला तो भी सोच रहा हा आपा सर्कस में ठीक हा यार, अठे आई ने और फंस गया, पण अबे वणा ने पछतावो नी वे रहो हो। अतरा माए पांच आरे खाणो आयो, सगला रे तो ठीक पण शेर रे खाणा माए गड़बड़ ही। वणी रो खाणो मांसाहारी हो, शेर राजा सु माफी मांगतो थको, क्यों महाराज मुं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं बचपन सु अबार तक कदी मांस चाख्यो तक नी। जंगल रो राजा बब्बर शेर अबे आपनी हंसी नी रोक सक्यो, वो राजी वेवतो थको बोलियो, वाह मजो आई गयो, आज पहली दफा कणी जानवर रा मुंडा सु अंग्रेजी सुनवाने मिल्यो। हाणी या वात घणी आछी लागी, मां भी मांस छोड़वारी कोशिश करा क्योंकि यह हिंसा है, पण कई करा। बाप दादा यो करता आया, माने भी यो मजबूरी माए करनो पड़े। मु या वात जानू के मांस भक्षण बुरी बात है। जंगल रा राजा वणा पांचा ने हऊ तरह सु जिमाई ने विदा करता भगत कियो, आप पांच ही दोस्त मारा जंगल माए आराम सु रेवो। एक अरज और की दी के आप पांच ही सर्कस रा हो, घना संस्कारी हो और तरह तरह रा कर्तव्य आपने करता आवे। अगर जंगल रा अणा जंगली जानवरा ने थोड़ी अक्कल दे दोगा, थोड़ो संस्कार दे दोगा तो माने जंगल माए भी मंगल वे जावेगा। पांच ही दोस्त घना राजी व्या, वणा ने मर्जी माफिक बात सुनने खुशी भी। राजा री बात वणा मान ली थी।

0: अबे भी आपारा जाति भाया पास रेवा लाग्या और सगला ने शिक्षित करवा लाग्या। जंगल रा जानवरा ने भी वनारा करतब देखने घणो आनंद आवतो।
1: अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत कहानी संस्कारी जानवर। कहानीकार थे नवीन कोठारी। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। आज कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में हमने आपको सुनवा है गीत का राजेंद्र कृष्ण की लिखे कुछ यादगार गीत और अब हम है राही प्यार की कार्यक्रम में भी आप सुनेंगे उन्हीं की कलम से निकले कुछ खूबसूरत नगमे।

0: फिल्म छाया से अभी ये गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, बोल राजेंद्र कृष्ण के सलिल चौधरी का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने।

0: में और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओ, ओ।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि और हम उन्हें याद करते हुए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म भाभी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, चित्रगुप्त का संगीत है।

संजोग फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण की रचना, मदन मोहन की बनाई धुन।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। आज

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की तर्ज पर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में यह अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: मैं आऊं
1: ना ना
0: मैं आऊं
1: ना ना ना
0: आऊं
1: ना
0: मैं आऊं पनघट के पीछे जा बैठी

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत। पूजा नारायणिया को नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत। आज थी उनकी पुण्यतिथि, उन्हें नमन।

सुबह की 8 बजने वाली है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और

0: जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते

0: खबरों से जुड़े रहिए एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी

0: दो विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
1: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
4: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
5: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
6: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की

0: पायल मुजफरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
1: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
2: मैंने पास पीजीवीसील का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉयस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 101.3 MHz आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं और उद्घोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से प्रस्तुत है।

दोस्तों, कार्यक्रम कुछ दिल से में आज का शीर्षक है साथी। दोस्तों, रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, मगर जो हर मोड़ पर हाथ थामे खड़ा रहे, वही तो जिंदगी का सफर सबसे खूबसूरत होता है। नमस्कार। जी हाँ, आज कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर

हाजिर हूं मैं आपकी आवाज प्रेरणा उपाध्याय। दोस्तों, आज जब मैं सुबह अपनी डायरी लिख रही थी तो एक शब्द आकर मेरे कलम पर रुक गया। वो शब्द था साथी। कितना छोटा सा शब्द है ना जी हाँ, सिर्फ दो अक्षर का, लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी कायनात का सुकून छुपा हुआ है। साथी जो सिर्फ सुख में हंसता नहीं जानता, बल्कि दुख में कंधे पर हाथ रखकर ये कहना जानता है कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। जी हाँ, बस एक पुकार उसकी, एक पुकारना है उसको कि भाई मैं खड़ा हूं तेरे लिए। और ये साथी कोई भी हो सकता है, आपका जीवन साथी, आपका बचपन का दोस्त, और वो माँ जो बिना कहे दिल का हाल समझ ले, या फिर वो अनजान शख्स जो बस के सफर में अपनी पसंदीदा खिड़की की सीट हमें दे दे। जी हाँ, तो सुनते हैं, इसी पर शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहला साथी कौन होता है? जी, मेरा तो बार बार मन यही गुनगुना रहा है, साथी साथी। तो दोस्तों कौन होता है सबसे पहला साथी? जी हाँ, वो गर्म चाय का प्याला। और फिर जब हम काम के लिए घर से निकलते हैं तो वो राह में मिलने वाले हम सफर। लेकिन जिंदगी के इस बड़े से सफर में साथी सिर्फ वो नहीं जो हमारे साथ चलता है, बल्कि साथी वो है जो हमारी खामोशी को भी पढ़ लेता है, वो दोस्त जो बस एक कॉल पर हासिल हो जाता है, वो जीवन साथी जो आज सुबह आपके टिफिन में आपकी पसंद की सब्जी रखते हैं, जी हाँ, या वो माँ जो घर से निकलते वक्त पीछे से धीमी सी आवाज देती है, दही चीनी खाकर जाना। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सुबह की ये मीठी मीठी धूप हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल इसी के लिए जुड़ाए हैं कि कुछ बातें करें, कुछ साथियों को याद करें जो हमारी जिंदगी के पीछे रह गए हों, और चाय की चुस्की लें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। जी हाँ, तो ही सफर का मजा होता है दोस्तों। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक इंसान ऐसा चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सके, जिसके साथ खामोशी भी बातचीत जैसी लगे और जिसके होने पर से सफर थोड़ा सा आसान हो जाता है। जी हाँ, वही तो साथी है। साथी यानी कि वो आपके साथ चले, हर मोड़ पर हाथ थामे, ये जरूरी तो नहीं, पर कभी कभी दूर रहकर भी वो आपके साथ बना रहे, वही सच्चा साथी है, जिसे कभी कभी याद करके कहते हैं ना कि मेरा मन एक कोरा कागज था, लेकिन जब से तुम मिल गए तो उसी पर नाम लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, तो सुनते हैं ऐसा ही कुछ ये गीत।

दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने कार्यक्रम आपकी अपनी आवाज कुछ दिल से में। और दोस्तों आज इस सुबह की मीठी मीठी चाय के साथ मुझे एक शायरी भी याद आ गई। लग रहा तो हमारे हाथों की भी बहुत

खास है। लकीरें तो हमारे हाथों की बहुत खास है, तभी तो आप जैसे साथी हमारे साथ है। जी हाँ शब्द दोस्तों, जब हम साथी शब्द सुनते हैं ना, तो सबसे पहले ख्याल आता है उस इंसान का जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बांटते हैं। वो जो हमारी चाय की चीनी से लेकर हमारी सारी परेशानियों तक का हिसाब रखते हैं, और कभी कभी हम उन्हें शुक्रिया कहना भी भूल जाते हैं। क्या दोस्तों, आप भी धन्यवाद देना चाहेंगे? जी हाँ, हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा इस माही चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल इस सफर में साथी बनकर। दोस्तों, सफर लंबा हो तो रास्ते मायने नहीं रखते, किसी अपने का साथ हो तो फासले भी मायने नहीं रखते। थक जाए अगर मन कभी इस जिंदगी की धूप में, तो एक साथी ही ऐसा शब्द है जो मौसम बदल देता है। चाहे कितनी भी धूप हो, लेकिन जब बगल में साथी बैठा हो, अपने मन की बातें करते हो, तो वो धूप भी एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास देती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस सफर में भी, और उस साथी के साथ बैठकर हम अपनी जिंदगी की परेशानियों के साथ साथ कुछ गुनगुनाते रहते भी हैं। वो दोस्तों संगीत, संगीत भी हमारा साथी है। जब हम तनाव में रहते हैं, तो इस साथी को याद कर लीजिए। जी हाँ, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से, लेकिन इस कार्यक्रम में बातें और भी आगे करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, साबा की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज़ ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज़ ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
6: So easy.
0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल में, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। जी हां श्रोताओं, और आज बात कर रहे हैं हम साथी की। दोस्तों, साथी जो साथ निभाता है हमेशा, कभी पास रहकर और कभी कभी दूर रहकर भी, क्योंकि हर साथ ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा साथ बना रहे, कभी वो दूर रहकर भी एक फोन कॉल पर भी हमारे साथ रहता है। कुछ लोग होते ही हैं दूर जाने के लिए, और कुछ रिश्ते परिस्थितियों की वजह से भी बदल जाते हैं, और कुछ साथी सिर्फ यादों में रह जाते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या दूरी के साथ

साथी बदल जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास नहीं होते लेकिन हमारी हर खुशी में शामिल हो जाते हैं। किसी पुराने गीत की धुन को सुनकर, किसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए, किसी खुशबू में, किसी तस्वीर में, या अचानक याद आ जाती है कुछ छोटी छोटी बातों में, कुछ उन पलों को जो साथ बिताए। वे हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। इस पर दो पंक्तियां भी कहूंगी दोस्तों। दूरियों ने भले ही रास्ते बदल दिए, यादों ने मगर रिश्ते कहां बदल दिए। कुछ साथी आज भी दिल में उसी तरह है जैसे कल ही बैठे थे हमारे सामने। शायद इसलिए कहते हैं कि सच्चा साथी दूर से नहीं, दिल से तय किया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एक गीत और सुनते हैं जो वादों में रहता है हमेशा हमारे साथ, वो साथी।

जी हाँ दोस्तों, जब वे पुकारेंगे ये साथी आपके लिए हाजिर होगा। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कुछ दिल से में बस इतनी सी बात दिल में रखिए, जिंदगी का सफर लंबा हो या छोटा, साथ अगर सच्चा हो तो हर रास्ता खूबसूरत हो जाता है। अपना का हाथ थामे रखिए, रिश्तों में वक्त दीजिए। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, साथ से मजबूत होते हैं। तो इसी के साथ आपके दोस्त प्रेरणा उपाध्याय इजाजत चाहेगी। फिर मिलेंगे किसी नए एहसास के साथ, किसी नए गीतों के साथ, किसी नए विषय के साथ। तो कार्यक्रम कुछ दिल से में आज बस इतना ही। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। आकाशवाणी वासवाणा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए हुए लोकगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी है, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में?
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: अपने आप सीमा मिश्रा की आवाज में राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज। बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में और राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा

0: विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन नहीं करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आज जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर की निगरानी में लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं कल उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी होगी। जिला प्रमुख पद का आरक्षण 13 अगस्त को पहले ही तय किया जा चुका है। लॉटरी के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण और जैसलमेर जिले के रामदेवरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी धाम में दर्शन पूजन के बाद सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना करेंगे। वे यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचेंगे। बाबा रामदेव पैनोरमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद युवाओं से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 37,000 से अधिक ऑनलाइन संकल्प पत्र भरे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के माध्यम से अधिक पात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा नागरिक सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सेवा सेतु अभियान की अवधि 3 दिन बढ़ाकर 28 सितंबर तक करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत प्रदेश में 383 रक्तदान शिविरों में 15,000 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में 30 लाख परिवारों ने भाग लिया, जबकि मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में 13,40,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। आगामी रबी सीजन को देखते हुए प्रदेश में उर्वरकों और मिनी किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ये मिनी किट राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार की जा रही है।
2: हम मिनी किट देते हैं, बहुत सारे वो हमने तैयार कर दिए। हमारा जो स्टेट की एजेंसी है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, उस पर हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं। मिनी किट्स हमारे तैयार हो रहे हैं और थोड़ी बारिश आई है, रिलीफ है, तो इससे हमारा अगली सोइंग होगी। तो हम पूरी तरह तैयार है किसान को मोटिवेट करने, प्राकृतिक खेती कराने और सारी चीजें आईटी से उसको सहयोग देने के लिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज डीएपी यूरिया का है, वो मेरे पास एडवांस स्टॉक है और हमने बहुत सारा एसएसएस के माध्यम से एडवांस में 1,25,000 टन के करीब यूरिया और उनको सप्लाई दे दिया हमने।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश भर में आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के नागपुर में समारोह मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े लोग समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को अपनाने

0: की अपील की।
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को योगा को अपनाइए। और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं।
0: राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से ये समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है। समारोह में आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों, नर्स, कंपाउंडर्स और अन्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ चिकित्सालय और औषधालय, विशिष्ट योजनाओं तथा भामाशाह प्रेरकों को भी पुरस्कृत किया

0: कार्यालय विशिष्ट योजनाओं तथा भामाशाह प्रेरकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पाली में आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और योग के बारे में जानकारी दी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा है कि दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की समय पर रिपोर्टिंग से मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। वे जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय फार्माको विजिलेंस कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मरीज को दवा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित और सही उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से दवाओं के साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग में किसी भी तरह का संकोच नहीं करने का आह्वान किया है। राज्य सरकार के तीन विभागों में आज पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय में होने वाली अदालत में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। मामलों का मौके पर ही तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पेंशन अदालत का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं से राहत दिलाना है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। सवाईमाधोपुर पुलिस की ओर से रणथंभौर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 1 अक्टूबर से टूरिस्ट हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे सहायता उपलब्ध रहेगी। पर्यटकों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सफारी, पर्यटन स्थलों, स्थानीय परिवहन और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। समस्या या शिकायत मिलने पर 15 मिनट के भीतर प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जालौर में आज टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से होने वाले कार्यक्रम में टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के शुल्क, टैरिफ प्लान, बिलिंग प्रक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में। और राज्य सरकार के तीन विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर गया
1: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में गाए हुए कुछ चुनिंदा गजले।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई।

0: थाना में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। आकाशवाणी वासवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे ही प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
1: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए।

0: पर फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
1: जी हाँ श्रोताओं, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा।
1: जी,
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
1: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
1: जी,
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
1: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी, लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए, लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है।
1: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई।
1: जी,
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी।
1: जी,
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए।
0: जी,
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है।
1: जी,
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है।
1: जी, एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है, और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है, और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक।
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब

0: ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ, सो हियर इज अ चाइल्ड लाइक यू हु वांट्स टू गो टू अ जू। Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals,
3: the polar bear and seals,
2: enjoy their fishy meals,
3: enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बाहर सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसके सूर में घुस गई और उसे काटने लगी।

हाथी परेशान होने लगा। उसने सूर को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ करता, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।

0: किसी एक दिन
1: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
2: देखो डाकिया आया।
1: चंचल सोचने लगी,
2: हाँ डाकिया, ये कौन?
1: बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल,
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल।
2: और आपको पता है
3: मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
4: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
3: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
4: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
3: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
4: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
3: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
4: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह

0: तीनों डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
1: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुँचाते हो?
0: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुँचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
1: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
0: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली, उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
1: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
0: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
1: हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
0: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करें।

0: करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
0: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से यह सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
0: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं, जो मेरे रूट्स हैं। टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच मैं हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है? हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच

0: थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
1: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप, मैं संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मैं कहा बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब एडेप्टेड प्लेज हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी

0: बाकी सब एडेप्टेड प्लेस हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेस का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेस नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेस हैं और गुजराती प्लेस जो रीजनल थिएटर है, आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेस हैं, जो इंग्लिश प्लेस यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं। वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेस ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपीए है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहां आप, आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए, इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं, और वो खामोशी का ये गाना सुनें।

0: भूमिखाति पूर्णैया, तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए, शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जाने चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं आते
1: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
1: जी।
0: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
1: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको
0: जी।
1: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
0: अच्छा,
1: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
0: बहुत खूबसूरत बात है।
1: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में बहुत दुख होता है कि ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं।

आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और

0: बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से। लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रही मैं काम फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बनके आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहां पंजाब में है, हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था। और

0: वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब मुंबई में है।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस की सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल, और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया, और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल से, लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

से हंसी मेरे दिल पर, रात हंसी

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है, वो आदमी शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे, वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी रही, ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ।
0: बिल्कुल।
1: तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है,
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाए सेट पर मेकअप लगाए और शुरू हो जाए एक्टिंग करना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: या फिर पूरी जिम्मेदारी बोझ पर?
1: डायरेक्शन के बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है, तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है और जहां हमको

0: एक गाना होता है वहां छह गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम
1: जी।
0: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में छह छह गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
1: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ।
0: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है। और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कंपटीशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है, और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार, जब थिएटर के बाद फिल्में आई तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा,
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
0: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी और सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बम्बई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, तो देखना बहुत जरूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहां की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ।

0: बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूं। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
1: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
0: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉयड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉयड के सितारे।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः 11 बजे प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं समूह कलाकारों की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें। शुरुआत कर रहे हैं जसवंत सिंह के आवाज में ये गजल।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

तब समूह कलाकारों की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत की है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है शर्मिली। गीत को लिखा है नीरज ने और संगीत एसटी बर्मन का।

0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा,
0: यहाँ हमें जमाना देखे। आओ चलो कहीं छुप जाए, भीगा भीगा नशा

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में शर्मिली फिल्म का ये गीत। लीजिए अब पढ़ते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में असली नकली फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज में ममता फिल्म का ये गीत।

ममता जी यशोदा वो अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में इस फिल्म का गीत। नीचे बढ़ते हैं अब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं चंबल की कसम फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चंबल की कसम फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। लीजिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मनहर उदास ने। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत एसडी मर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और मनहर उदास ने। लीजिए अब बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, सुनते हैं प्रेम प्रभात फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम प्रभात फिल्म का ये गीत, आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दिन के 12 बजने को है, लीजिए अब सुनिए हमारे मुंबई के अंदर से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन

0: सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्ने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शहर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज, केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी

0: मुबारक बेगम की आवाज थी। फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: याद आएगी अंधेरे छा रही।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
3: ओ, ओ, ओ।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग।
1: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल

0: विविध भारती
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में

0: लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: हवा
1: आहा तुम जा ए काली घटा
0: आहा सुन जा आ ठंडी हवा
1: आहा तुम जा ए काली घटा
0: कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा
1: सुन जा आ

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की कुड़िया।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत पोस्ट करते हैं। एक टेक्स्ट होता है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आता है। फेसबुक पर जाना है और लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती का पेज नजर आएगा, यहाँ होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के। आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम। गम राह में खड़े थे वो साथ हो लिए, सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम। पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं। हां आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो, बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं और इसमें वो गाने छुपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम। और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सज जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या अपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है, और हाँ किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना।

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं, कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती हैं उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बात

ये हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया, ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना है, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और उसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया। अचानक ही इस गाने को लेकर

भई भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था जिसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया, और भीगा भीगा है समा ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है। मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं हमारे यहां झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए।

न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्यदेव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्म आया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती सुरीला सफर यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। दसवीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और है कहती है कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहां और आराम कहां, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा, हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी, एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था, बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत के आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

तलत महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता है जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता है जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं, उनसे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजेक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं, जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 वर्ष पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मन पसंद करें।

कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्नों को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहे। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहती है नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए, क्या बात है भाई, क्या डिमांड किया आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के जमाने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह है कि आप आज के जमाने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं।

चंपा खली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनता रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रही पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताजा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आज के जमाने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना जमाना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का उदासी का टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया। जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं,

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी ये मेरे कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप दो दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा। विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, सुल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखिए।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: घर मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

इनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू।

0: कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।
2: आहा।

0: मैं विद्वारिथी से बोल रही हूँ, आइए सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

0: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2030 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 63% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
5: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखते हैं।
6: माय नेम इज रमेश।
7: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर

0: चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
1: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
5: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार।

भाई भाई फिल्म के गीत।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रहे थे, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो। हाँ, कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल मेरा पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
0: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
1: आप इन दिनों कर रही है? मैं तो हमेशा से करती हूँ।
0: अच्छा, क्या लेती हूँ?
1: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
0: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
1: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं।
0: हाँ,
1: किस तरह से आप अपनाते हैं?
0: सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
1: जी,
0: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है,
1: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
0: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
1: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें अब सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हिंदी सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होती थी, उन संकेतों को हम अपने घर भी दोहरा देते थे। हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
1: कितना मजेदार वो
0: माहौल हुआ करता था, वो आज भी हमें याद है।
1: जी
0: बिल्कुल। और बताइए,
1: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
0: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
1: जी,
0: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन की गई या क्या
1: कौन से कलर की है, आपके
0: ऐसी है और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पतिदेव ने क्या कहा,
1: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी सखिया।
0: बताना चाहिए अगर आपके पतिदेव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
1: वही तो। और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है?
1: और नहीं, व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
0: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं?
1: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
0: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही हूँ। मैं लौकी, मुझे पसंद नहीं है।
1: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
0: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
1: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
0: अरे वाह, मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
1: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
0: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक घूंसे तोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं, लौकी बहुत अच्छा
1: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है।

0: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है
1: जी। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
2: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, हाँ। बच्चे करते हैं ना अक्सर। हाँ।
0: क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी।
2: मम्मी क्या करती उसके पराठे बना के बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए उनके।
1: बिल्कुल
2: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
2: और अब काला सुनते
1: हैं। बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ कह रही है कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस

0: किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
0: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
0: जी
1: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
0: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
1: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति की का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
0: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें एक संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं। इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।
1: कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां बन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी। तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकता है ना।
0: जैसे बहुत ज्यादा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना

0: हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारे श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली

0: जितना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश न करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
1: क्या बात है,
0: सुंदर, दिल को छू लेने
1: अभिव्यक्ति दी है
0: जी।
1: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है
0: जी।
1: कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है
0: जी। सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
1: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है
0: जी। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
1: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
0: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
1: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
0: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदना है। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
1: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: सुनते हैं

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें रो रो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपके रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में
0: अपनाते हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही
1: हल्दी का दूध पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
0: जी,
1: है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर, तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: सही होंगे,
1: तो अच्छी होगी, रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं जहाँ आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी
0: बाघ प्रिंट साड़ी।
1: हाँ।
0: क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है बाघ प्रिंट साड़ी। भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है, कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं। और इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वो बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इसे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है।
0: हाँ?
1: और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको मदद करता है ना, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
1: जी, और बाघ प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगर की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
0: इसीलिए बाघ प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारे सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती है। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाघ प्रिंट के सूट और साड़ियां लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बाघ प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी एमपी से हूँ, मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चली
1: चलिए और ले लेते हैं,
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाघ मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगे तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाघ प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, सभी को कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों

0: हमें भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है, किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना। ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
0: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और क्या क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
0: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं। अरे जिंदगी तो हमारी बोरियत हो गई
0: जी,
1: जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
0: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनाएंगे।

0: बच्चों हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी की जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक ही लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दू की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन, जीरा छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए। हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगली में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च, 1-2 कटी बारीक और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई बनाने की विधि। कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट

0: वह भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें, छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है, पता चलेगा
1: जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गर्म करें, इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए, दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसे हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस कसले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माई इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी यार जब इडली हम बनाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी जेब में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिये में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चों को लौकी खिलाकर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल।

रुको व्याकुल मन, जिसने था

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी शाम की बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहां तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नजर आ जाएगा और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी फिल्म वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे। मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीजों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
2: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम बताया कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए सर कानों में वही आवाज
1: जी,
2: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
2: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर

0: कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूं, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहां बैठकर मैं बोल पा रहा हूं, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। ये सफर जो यहां तक पहुंचा है आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा भी आपने कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी है तो बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका?
0: सर, मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका?
0: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का, वहाँ की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर, मैंने बीकॉम किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया। बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती है, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: लेकिन
0: किया।
1: इतिहास की आपने जब बात की है, तो आपके जितने सीरियल्स हैं जो धारावाहिक हैं, वो ऐतिहासिक ना भी कहें तो पौराणिक तो है ही, पुरानी चीजों से जुड़े हुए। जो आपको पसंद था, आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए किया था जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचा है।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहते हैं ना, समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े, मतलब एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो, मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग एन ऑल, पार्वती, जैसे मैंने भी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति अलग होती है सर, वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहां खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहां निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप ओहो ये चुभ
1: रहा है, जैसे लेकिन आपकी मुस्कान जो है ईश्वरी है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते। अच्छा ये बताइए कि सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है, हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं, लेकिन जो किरदार देखे नहीं, माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो देखे हुए नहीं रहते, तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं, उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसे ही फील आता है जब आप माइथो में एक कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लग ही रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफी विषयों की मेरी जानकारी भी है, अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते, तो उसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, देखी होती है, आपने फोटोग्राफ देखे होते, आपको पता हाँ यार ऐसी होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द कह दूं कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज बदल जाती है।

0: वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, उनके जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके।
1: बिल्कुल,
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में। या मेरे अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी एक्टर उस कैरेक्टर को करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें।

0: कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही श्लोक जो है
1: जी जी।
0: अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते, अलग अलग अंदाज में नहीं कह सकते।
0: जी जी, जैसे मेरा कैरेक्टर था भगवान वाल्मीकि का रामसिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से मेरे ही आश्रम से।
1: अच्छा।
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है
1: जी।
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत का श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की, लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते हैं और सुनवाते हैं।
0: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बात में करेंगे।
0: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: जी आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है, ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब, तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते ना कीड़ा जो उन्होंने डाला तो दिमाग में वो ही।
1: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहां से आ जाता है?
0: अरे एक कहावत है ना कि
1: रुचि जगाई,
0: मतलब हाँ मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
1: उस ओर प्रेरित
0: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा बोलते हैं कि कीड़ा।
1: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
0: तो अच्छा है तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे,
1: अभी तो नहीं है ना,
0: अभी भी कभी कभी तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम न करना, कुछ न करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका, नोबडी वॉट्स इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा, तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट, देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा लाइन बोल के दिखाओ, हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया, हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता, रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का कैरेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था, वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे, मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या ये हो नहीं सकते, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया, नहीं नहीं नहीं नहीं अब तो ये तुम ही करोगे, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का कैरेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल बाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर, डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी, वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देखने तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठ बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे हो कि अगर मैं होता तो कैसे करता, मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ,
1: क्या बात।
0: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीजें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
1: तो सब अच्छा हुआ ना,
0: सब अच्छा हुआ, वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
1: ये बात सही है।
0: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वाज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था 2 हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वाज अ कैमियो कैरेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये के, तो ये तो अब पता लगा। तो मेरे को जो प्रोडक्शन से कॉल आया, राष्ट्रीय प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। मैं कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसे समझ नहीं थी मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। तो वो 2-3 दिन का काम था, शायद वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहां बैठा हूं विविध भारती में, और मैं आप सब लोगों को सुनता हूं, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं सोचता यार ये लोग कैसे काम करते, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है। तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी, आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीजें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। तो मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
1: हाँ मैं पूछूंगा जरूर आपसे।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहां पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई।
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीजें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता जरूर है। एवरीबडी इज एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएं हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएं हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन के आपको कहां जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है। मैं ऐसा मानता हूं, तो आप उसी राह पे चलते हैं।

0: लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को
1: जी जी,
0: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने। वो एक फैमिली की जो ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो आगे की रंग हो जाते हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूं जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे चार ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूं कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूं सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे चार बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ 6

0: मंथ्स, मतलब ठीक है, लेकिन वो जो सीरियल हुआ जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रूर जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं, और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर, और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे, बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए, क्योंकि
1: पर वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
0: नहीं सर वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे
1: नहीं
0: लगता
1: था?
0: तो नाम सोचेंगे अक्रूर, तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
1: हाँ,
0: वो
1: क्रूर
0: क्रूर नहीं है।
1: क्रूर नहीं है वो,
0: हाँ ये मुझे लगा कि शायद
1: अक्रूर है वो।
0: वो अक्रूर है।
1: अच्छा,
0: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन वो
1: हाँ
0: शुरू में
1: जी
0: क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
1: जी जी
0: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है मैं उसको निभा रहा हूं। कई बार क्या होता है आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज ऐसे, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
1: अच्छा,
0: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो वो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है, तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कृष्ण ने आपको इन्वाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल तो चलते हैं, उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूं मैं, तो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाए। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूं, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं, तो फिर वो उनको क्रूर वॉज अ रीजन कंस को मारने के, जो भगवान कृष्ण और बलराम को लेके जाते हैं और वहां पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
1: कैसा प्रतिसाद मिला उस कैरेक्टर का आपको?
0: बहुत सर बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मैं बहुत बड़ी बात थी
1: हमारे
0: अक्रूर।
1: श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है, और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार
0: हाँ
1: जो
0: सर,
1: मेन थे
0: उसमें
1: आपके।
0: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसमें मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया,
1: जी
0: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं, और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर, वंडरफुल
1: क्या
0: करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड, मतलब उसमें सर मुझे इतना आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहां पर हिंदुज्म है जहां पर, वहां लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के बेचते थे, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो दैट वॉज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
1: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है,
0: बिल्कुल सर,
1: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसे कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
0: देखिए सर काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, आपका जो काम है जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते,
1: हम नहीं चुनते।
0: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है, अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें।

0: कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता है। जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल लें, गब्बर वॉज द बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया, तो एक्चुअली रोल आपको करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
1: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं
0: क्योंकि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
1: ये बात तो है। और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं कभी आपको गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
0: इट इज वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं वक्त।

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो है लाइन्स आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का आपने इस दरमियान बहुत बार जिक्र भी किया है अपनी बातचीत में कि आपको बहुत संभालते भी हैं और उनका भी सहयोग रहता है, तो बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्य द वंडरफुल का है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाह जीवन साथी मिले और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों। पर ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में वहाँ पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है और वो अभी कॉलेजेस सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं तो गाइडेंस तो मिल ही जाएगा घर से ही। और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
1: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना, मुझे साइंस में।
0: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
1: नहीं, मैं दबाव नहीं डालता। मेरा कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए हो। लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान न करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आप ये बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
0: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कौन सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है?
1: सर आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, ये कहता था यार यू आर वेरी नेगेटिव आईज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे एड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते? तो आई वाज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विजन ही हैज, नहीं नहीं यार ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वाज अ ब्यूटीफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूं ना उस सीरियल में, इतना रोया हूं कि मैं एक बेटी
0: हिमवान आपने
1: शिव शक्ति में मैंने, जिसे पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद, तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाया ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे को बेटी नहीं है, मेरे एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाया ना सर उसमें। मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज को समझने में। मैं कहता सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव कैरेक्टर दे, तो मेरा मन करता है मैं नेगेटिव कैरेक्टर निभाऊं। तो पता नहीं इनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो कैरेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
0: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो है अच्छे से निभा पाएंगे?
1: सर अब तो मैं सारे कैरेक्टर अच्छे से निभा सकता हूं। अब तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना।
0: क्या बात
1: है ना, गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना ये सबसे मुश्किल काम है,
0: सबसे कठिन है।
1: और सबसे मुश्किल काम है आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप अपनी भावनाओं से किसी को इमोशनल कर सकते हैं,
0: किसी बात से कर सकते हैं
1: या कोई सिचुएशन ऐसी कि सामने वाला इमोशन हो जाए या किसी को आप हंसा सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये

0: बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूं, फिर ये है कि जो करूं अच्छा करूं।
1: नहीं वो तो आप करेंगे ही। अच्छा ये मिर्जापुर 3 जो है
0: जी जी,
1: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है
0: मिर्जापुर 3? सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था इनकी कास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्जापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्जापुर की जो कैरेक्टराइजेशन है मुझे लगता है मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वड़ा। अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बड़े बहुत बड़े क्रिटिक है मेरे, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। सो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं, बनाया भेजा। कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये भी सर 2 दिन का करेक्टर है, मैंने कहा चल 2 दिन कर लेते हैं, मिर्जापुर का एक नाम हो जाएगा। मैं सर सेट पे पहुंचा, सब चीज हो गई, मैं सब सेट पे पहुंचा, मैंने किसी पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो देयर वाज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोई हुए छोटे से, मतलब तो बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह। बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, आई एम द डायरेक्टर। तो उन्होंने सर मुझे इतना कम्फर्ट कर दिया ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूं और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का करेक्टर कर रही, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था, मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्जापुर पहले 2 सीजन हो चुके हैं, 3 सीजन में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा गुरमीत जी कैसे? बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की, इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के। पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी, और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना। बोले नहीं नहीं आपको किसने बताया? यही सुना था। बोले नहीं नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट है उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है। तो मैंने कहा हाँ वो सब है,
1: कंटिन्यूटी में है।
0: हाँ मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए तो आज तो बहुत काम है आगे। तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, कर रही ये कैसे हो गया? तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही कल्पना में होंगे, अच्छा अरे यार भाई तो बढ़िया होगा, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में तो गुड करेक्टर बनाना निमकाना। तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैं प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा करेक्टर कहां से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए, तो ये
1: काम करने में मजा आया।
0: हाँ मतलब फिर लगा यार इज अ करेक्टर बेसिकली, और करेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए इसमें, और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा। लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड करेक्टर, 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा,
1: बिल्कुल बनेगा। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं
0: जी, जी, जी।
1: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
1: ये बात जीवन में जो है मायने रखते,
0: ये मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम
1: फोकस करना है कि ये कर रहा हूं,
0: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती है
1: बिल्कुल।
0: तो ये हौसला कैसे रुके?

0: तो मिर्जापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े
0: जी
1: किरदार
0: जी
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता। हाँ मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना, उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूं, क्योंकि फिल्में ता उम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्म ही करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी वे इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी, बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि बहुत ज्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाल, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। हमारी शाम की सभा में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। शाम के 5 बजे हैं। डीजे प्रस्तुत है हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम वही रानी बात हमारे स्टूडियो से। वहीं रात्रि 10 बजे आपको लेकर चलेंगे सदाबहार नगमों के सफर पर।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 9 बजे। वहीं जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स।

हमारी शाम की सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार एवं शाम 6:45 पर राजस्थानी

में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या एवं रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हमारे कल की प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में प्रातः 6:30 पर रामचरितमानस गान, वहीं 6:45 पर समय रहेगा किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती में बात का। कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 6:50 पर, वहीं कार्यक्रम वातायन आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे दिली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से, और वहीं 8:45 पर समय रहेगा राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। प्रातः 9:10 पर एवं प्रातः 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। वहीं 11:30 पर आपको लेकर चलेंगे सदाबहार नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 एवं दोपहर 12। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 हिंदी में समाचार, प्रातः 8 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, वहीं प्रातः 9 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज के सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए जया चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज 23 सितंबर है, राष्ट्र कवि श्री रामधारी दिनकर का जन्म दिवस। आज के इस पावन अवसर पर हम उन महान कवि को नमन करते हैं जिनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की ज्वाला जगाई, जिनकी वाणी आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देती है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सामरिया गांव में हुआ। इनके पिताजी कृषक परिवार से थे, पिता श्री रवि सिंह और माता श्रीमती मनरूप देवी। इनके पुत्र ने बचपन से ही अनेक संघर्षों का सामना किया, कठिनाइयों ने उनकी प्रतिभा को और निखारा। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से

शिक्षा प्राप्त की और अध्यापन, पत्रकारिता तथा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली हुई है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, देशभक्ति, क्रांतिकारी और मानवता के अनूठे संगम हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और कर्ण का चरित्र, इतनी शक्ति और करुणा। वह आज भी पाठकों के हृदय को छू लेता है। कुरुक्षेत्र युद्ध और अहिंसा पर बहुत गहन चिंतन है और उर्वशी प्रेम और आध्यात्मिक का एक बहुत अनूठा काव्य है। उनकी गद्य रचना संस्कृति के चार अध्याय को 1949 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें पद्मभूषण से भी नवाजा गया। 1972 में उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। दिनकर जी केवल कवि नहीं थे, वे स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्र के सजग प्रहरी भी थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज भी लोकतंत्र की चेतना को जगाती है। दोस्तों, आज जब हम दिनकर जी के जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें उनके संदेश को भी जीवंत रखना होगा। वे कहते थे कि कविता केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज की जागृत करने का एक बहुत अचूक साधन है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि अन्याय के सामने चुप नहीं रहना चाहिए और देश के लिए बलिदान की भावना सदैव जीवित रखनी चाहिए। सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि दिनकर जी की रचनाएं पढ़ें, उनकी ओजस्वी वाणी से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपना उचित योगदान दें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कोटि कोटि नमन और उनकी स्मृतियों को सलाम। हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत और जरूरी संदेश।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज का दिन करोड़ों बधिर और कम सुनने वाले भाई बहनों के लिए समर्पित है, जिनकी भाषा हाथों, चेहरे और शरीर के भावों से बोलती है। हम सभी उन भाषा का सम्मान करते हैं जो मौन में भी गूंजती है और दिल तक संदेश पहुंचाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2017 को एक प्रस्ताव पारित कर 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। पहली बार यह 2018 में मनाया गया था। यह तारीख चुनी गई क्योंकि 23 सितंबर 1951 को विश्व बधिर महासंघ की स्थापना हुई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के दौरान आता है और बधिर समुदाय की भाषाई पहचान, सांस्कृतिक विविधता और इनके प्रतीकों की रक्षा करता है। दुनिया भर में एक शोध के अनुसार 7 करोड़ से अधिक बधिर लोग हैं। इसमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं और 3 से अधिक अलग अलग सांकेतिक भाषाओं का यूज भी करते हैं। भारत में भी भारतीय सांकेतिक भाषा बधिर समुदाय की मुख्य भाषा होती है। संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सांकेतिक भाषाएं बोलचाल की भाषाओं के समान पूर्व विकसित प्राकृतिक भाषाएं हैं। इस वर्ष 2026 की थीम है बधिर लोगों के मानव अधिकारों की घोषणा। यह थीम हमें याद दिलाती है कि केवल मान्यता देना पर्याप्त नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सार्वजनिक सूचना और सामाजिक भागीदारी, जीवन के हर क्षेत्र में सांकेतिक भाषा के माध्यम से पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। 2026 में ही विश्व बधिर महासंघ की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। यह वर्ष और भी विशेष है। सांकेतिक भाषा केवल इशारे नहीं है, यह एक समृद्ध भाषा है जिसमें व्याकरण, शब्द भंडार और संस्कृति निहित है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी से आग्रह कि सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, बधिर मित्रों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी अधिकारों की रक्षा भी करें। एक बार फिर से सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी बधिर भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे ना निकाले हर काम में कमी। हमें जीवन में हर दोष ढूंढने की आदत छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह बहुत जरूरी है और यह बहुत लाभकारी भी है। अक्सर हमारे जीवन में कभी न कभी काम में हम पाते हैं कि कोई भी काम पूरा होता है तो सबसे पहले उसकी कमियां बाहर आ जाती है, चाहे घर का हो, समाज का हो या कोई कार्यालय का हो। हम भूल जाते हैं कि हर काम में मेहनत, समर्पण और समय लगा होता है। अगर काम में केवल कमियां ही निकाली जाए तो ना तो करने वाले को उत्साह बढ़ता है और ना ही गुणवत्ता में सुधार होता है। वास्तव में हर काम में कमी निकालना बहुत आसान है, उस काम की अच्छाई को देखना कठिन है, उसकी सराहना करना थोड़ा कठिन है और रचनात्मक सुझाव देना। जब भी हम किसी की मेहनत की प्रशंसा करते हैं तो वह व्यक्ति और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन जब हम केवल आलोचना करते हैं तो हतोत्साह पैदा होता है और कमियां निकालने से सकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि पूर्णता अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है। कोई भी काम एकदम निर्दोष नहीं होता। महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, सभी से गलतियां होती है और फिर सुधार किया जाता है, आगे बढ़ा जाता है और अनेक उपलब्धियां पाई जाती है। सकारात्मकता और नकारात्मकता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें हमेशा इनमें बैलेंस बना के रखना चाहिए।

0: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तो दोस्तों, समय हो चला है कार्यक्रम युववाणी को समाप्त करने का, और दीजिए इजाजत जया चतुर्वेदी को कार्यक्रम युववाणी से। फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:38 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉन फिल्म के इस गाने के साथ, शंकर महादेवन की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: उंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरबदा सपड़ विचार
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो
1: आ रहे हैं विविध भारती पर
2: तुम्हें कुछ भी कहे मामा श्री लेकिन उस ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: आशा भोसले शब्बीर कुमार और कुमार सानू की आवाजों में आप सुन रहे हैं घायल फिल्म से ये गाना इंदिवर के बोल बप्पी लहरी का संगीत

जो भी होगा देखा जाए।

कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की।

जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में रामलखन फिल्म से ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा, तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैम्प लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ। तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। यह हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से

0: निभा सके। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा त्यास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम का अगला गाना।

कयामत से कयामत तक। इस फिल्म से आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल, माफ कीजिएगा, मजरू सुल्तानपुरी के बोल आनंद मिलन का संगीत।

पराया धन। इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में यारा दिलदारा से ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुराधा श्रीराम की आवाज में आप सुन रहे थे लज्जा फिल्म से गाना समीर के बोल अनु मलिक का संगीत। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ये लॉटरी निकाली गई। हर श्रेणी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन में ये प्रक्रिया पूरी की गई। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में अलग अलग कोटे से कुल 11 महिला प्रधान बन सकेंगी।
1: जो डायरेक्शन आए थे उसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान हैं उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से की है। इसके अलावा पंचायत समिति सद के वार्ड्स है, टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे SC ST OBC और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
0: प्रदेश में अभी पंचायत चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किंतु आरक्षण तय होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में से केवल एक सीट अनारक्षित हुई है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग से प्रधान बनेगा। हनुमानगढ़ जिले की 10 पंचायत समितियों में अलग अलग वर्गो के लिए प्रधान पद आरक्षित किए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के बाद कल उपखंड स्तर पर वार्ड पंच और सरपंचों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में 10 अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते हुए हैं, इनमें से 4 राजस्थान से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री आज ब्यावर जिले के जैतारण में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ERCP, यमुना, नर्मदा, किशाऊ बांध परियोजना समझौते से प्रदेश में पानी की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय चुनावों से समय और श्रम दोनों की

0: बचत हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के बाद सहकारिता चुनाव करवाने की बात भी कही। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचे। श्री शर्मा ने बाबा रामदेव पैनोरमा से मंदिर तक पदयात्रा में शिरकत की। जयपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेंशन अदालत लगाई गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में 13 पेंशनर्स को पीपीओ प्रदान किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सीएमएचओ कार्यालयों में उपस्थित पेंशनर्स से संवाद भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जिलों में भी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत अधिक ओपीडी भार वाले बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर बनाया जाए। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान का पेंशन सिस्टम देश की बेहतरीन पेंशन सिस्टम में से एक है। पेंशनर्स के अधिकारों और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।
1: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओ जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओ जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटर ऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने बताया कि इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओस का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
0: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्य के दो दिन के दौरे पर है। लोकसभा सांसद बृहहरि महताब की अध्यक्षता वाली इस समिति ने आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा की गई और विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अनुसार संजीव भाटिया को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, जिसमें आयुर्वेद की उपयोगिता, समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली में इसकी भूमिका पर विचार साझा किए गए। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि सूर्य नमस्कार को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी बचपन से ही योग और प्राणायाम का अभ्यास कर सके। उन्होंने कहा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी के इलाज में कारगर है।
2: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं, जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
0: आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों सहित अन्य कार्मिकों को समारोह में सम्मानित किया गया। स्टार्टअप इंडिया पहल ने पिछले एक दशक में देश में उद्यमशीलता का एक नया अध्याय खोला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्टार्टअप्स की शुरुआती वित्तीय और मार्गदर्शन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सीड फंड योजना और पोर्टल चलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की जनउपयोगी पहल स्टार्टअप इंडिया के बारे में।
3: देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब एक दशक पहले स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। साल 2016 से शुरू हुई इस नीतिगत पहल ने भारत की उद्यमशीलता और नवाचार पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। दिसंबर 2025

0: 2 लाख से ज्यादा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR इस परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। साथ ही 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से आ रहे हैं। ये देश के ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाट रहे हैं। इससे ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिल रहा है। साथ ही महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। स्टार्टअप्स रोजगार सृजन के साथ ही नवाचार और वैश्विक बाजार एकीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूज डेस्क से सलीहा गाजी।
1: सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत तकनीकी सहायता से 200 से ज्यादा गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल और पुलिस की विशेष टीम ने इन्हें तकनीकी माध्यम से ट्रैक किया।
2: सवाईमाधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाईमाधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CEIR पोर्टल पे जिन्हें गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया। तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CEIR पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका रही है उसका पूरा श्रेय जाता है सवाईमाधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
1: और अब बात खेल जगत की। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लो की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। प्रदेश में मॉनसून विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी और उमस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कल अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव विश्वनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल PPO जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है संदीप केड़िया ने। नगरीय निकाय चुनावों में जिले के 19 निकायों में अध्यक्ष पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 8 और एक निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 6 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 निकायों में जीत दर्ज की। खेतड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की गीता देवी सैनी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। जिले में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले अभियान की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में आमजन, किसान, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखने की बात कही। अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने दीप जलाकर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अलसीसर ग्राम पंचायत के सरोवर

0: सेक्टर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिलाओं ने मंगल गीत प्रस्तुत किए। विश्व ओजोन दिवस पर कंजर्वेशन रिजर्व बीड झुंझुनू में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ओजोन परत के संरक्षण, पौधरोपण और ऊर्जा बचाने का संदेश दिया। इसके बाद बीड क्षेत्र में पौधे लगाए गए। विद्यार्थियों ने वन क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय वनस्पतियों, पक्षियों और वन्य जीवों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार सैनी ने पर्यावरण संरक्षण में समाज की भागीदारी की आवश्यकता बताई। जिले में युवाओं को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में क्विज में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी और माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा की गई। शिक्षा, सामाजिक न्याय, RCT, ITI और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से युवाओं का पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति और दवाओं तथा जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा बाहर से खरीदने या जांच बाहर से कराने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। सरकारी आपूर्ति नहीं होने पर नियमानुसार स्थानीय स्तर पर दवा उपलब्ध कराने को कहा गया। मरीजों को जांच रिपोर्ट व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। कोलेसिया स्थित टाई एंड डाई क्लस्टर में PM विश्वकर्मा योजना के तहत इसमें 80 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। उन्हें योजनाओं की सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पारंपरिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में AI और डिजिटल माध्यमों की भूमिका भी समझाई गई। नशा मुक्त राजस्थान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शेखसर और तोलियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के साथ बाल अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें नशे से दूर रहने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। स्पर्श अभियान के तहत प्रभारी सचिव नवीन जैन ने करीब 1300 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और बाल शोषण से बचाव जैसे विषयों की जानकारी दी। अभियान के समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू हुआ यह अभियान अब तक 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। झुंझुनू शहर में नगर परिषद की ओर से साफ सफाई और रखरखाव के काम किए जा रहे हैं। सड़क किनारे जमा मिट्टी और मलबा हटाने के साथ ही डिवाइडरों की सफाई की गई। नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि सड़कों के पैचवर्क और नालियों के फेरो कवर से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं। पिलानी स्थित CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। संस्थान की स्वदेशी तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर और पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आवता पंचायत चुनाव में प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली ची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो, पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल BPO जारी करण की कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस के मौके प्रदेश में न्यारी न्यारी थोड़ा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया। और एशियाई खेलों का पांचवा दिन भारत 5 तमगा जीतिया। नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदी रो तमगो जीतियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायत चुनाव बाबत प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों सारू आज आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। इन तेत हर श्रेणी में महिलाओं सारू आधी सीटा आरक्षित रखी ची है। जयपुर जिला री 22 पंचायत समितियां में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि जिला में न्यारा न्यारा कोटाओं 11 महिला प्रधान बन सकेला।
2: जो डायरेक्शन आए थे उसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे

0: के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान हैं, उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से किए हैं। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य वार्ड्स हैं, टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे एससी एसटी ओबीसी और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
1: प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव रो ऐलान नहीं करी जो है, पर आरक्षण ते भी बनसा गई, चुनाव लड़वारी मर्जी रखने वाला रे हलचल बधवार आसार है। उदयपुर री 20 पंचायत समितियां में केवल एक सीट अनारक्षित रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति तबका रो उम्मीदवार प्रधान बनेला। हनुमानगढ़ जिला री 10 पंचायत समितियां में न्यारा न्यारा तबका सारो प्रधान पद आरक्षित करी चिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि सरकार प्रदेश में पानी की परेशानी आगे करण सारो सगला जरूरी जतन कर रही है। वह आज ब्यावर जिला रा जैतारण माए राखी जा एक कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि हाल ही माए देश माए न्यारा न्यारा राज्य बीच पानी रा बंटवारा में जुड़िया 10 करार करी चिया है, जहां माए 4 राजस्थान में जुड़िया है। श्री शर्मा कहो कि ईआरसीपी यमुना नर्मदा किशाऊ बांध परियोजना में जुड़िया करार प्रदेश माए पानी की कमी दूर फैला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन रिसोर्च रातेत कराई जा नगरीय निकाय चुनाव समय और श्रम दोनों री बचत हुई है। वह पंचायत चुनाव पाछे सहकारिता चुनाव कराने री बात ही कही। इन पाछे मुख्यमंत्री रामदेव रामाय बाबा रामदेव पेनारुमाओ मिंदर ताई निकाली जी पैदल यात्रा में शामिल हुआ। श्री शर्मा बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर जनता री खुशहाली री कामनाई कीनी। जयपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग री पेंशन अदालत लगाई जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य भवन में पेंशन लेवन वाला 13 जना ने पीपीओ दीना। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य रा न्यारा न्यारा सीएमएचओ दफ्तर में मौजूद पेंशनर सागे बातचीत कीनी। इस मौके मुख्य सचिव कहो कि पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल पीपीओ जारी करने की कोशिश करी जा रही है। वह आरजीएचएस रातेत मरीजों की 32 तादाद वाला अस्पताल में पेंशन लेवन वाला सारू न्यारा काउंटर बनावन रा हुक्म दीना। खबर नवी सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव कहो कि राजस्थान रो पेंशन सिस्टम देश रा बेहतरीन पेंशन सिस्टम में शामिल है। वह कहो कि पेंशन लेवन वाला रा हक और उनका स्वास्थ्य री हिफाजत ते करण सारू राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
2: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओ जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओ जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटर ऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने यह बताया कि इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओ का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
1: लोकसभा सदस्य भर्तहरी महताब री सदारत वाली वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्य रो 2 दिन रो दौरो कर रही है। समिति आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा महकमा रा आला अहलकारा सागर मीटिंग कीनी। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रो जायजो लियो चियो। भारतीय जनता पार्टी न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेश अनुसारू पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियां री नियुक्ति कीनी है। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रमुजब संजीव भाटिया ने राजस्थान रा प्रभारी बनाई चिया है। सतीश पूनिया ने जम्मू कश्मीर और पंजाब रा प्रभारी बनाई चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुर्वेद दिवस रे मौके आज प्रदेश में न्यारी न्यारी छोड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाई चिया और जाग जगावन रा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर में राखी चिया राज्य स्तर रा जलसा में आयुर्वेद री उपयोगिता समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ

0: जीवन शैली में आयुर्वेद री भूमिका रा बारा में विचार करी छियो। ई मौके आयुर्वेद विभाग रा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार कहो कि सूर्य नमस्कार ने स्कूलों की पढ़ाई रो हिस्सों बनायो जा सके है, जिनू विद्यार्थियों ने बालपना में योग और प्राणायाम रो अभ्यास करन रो सुबीतो मिल सके है। वह कहो कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी रा इलाज में कारगर है।
1: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
0: कार्यक्रम रे दौरान आयुर्वेद रा हलका माए बेहतरीन काम करने वाला वैद्यां और नर्सिंग कर्मचारियां समेत दूजा कर्मचारियां रो मान करी चियो। स्टार्टअप इंडिया पहल लारला 10 साल माए देश माए उद्यमशीलता रो नुवो पाठ शुरू कीनो है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा तहत स्टार्टअप श्री शुरुआती माली और मार्गदर्शन में जुड़ी जरूरत पूरी करण सारू सीड फंड योजना और पोर्टल चलाया जा रहा है। पेश है केंद्र सरकार री खास पहल स्टार्टअप इंडिया रे बारा माए एक रिपोर्ट।
2: देश माए करीब 10 साल पहले कारोबार में बधावो देवन सारू स्टार्टअप इंडिया री शुरुआत करी जी ही। साल 2016 माए शुरू हुई नीतिगत पहल देश री उद्यमशीलता और नवाचार माथे बदलाव लावण वालो असर डालियो है। दिसंबर 2025 ताई 2 लाख हूं बत्ता DPIIT मान्यता मिलोड़ा स्टार्टअप सागे भारत दुनिया रा सबू मोटा स्टार्टअप इकोसिस्टम रा तौर मजबूती सामी आयो है। बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR ई बदलाव माए अगाड़ी रहा है। इस आगे आधाओं बत्ता स्टार्टअप सब Tier 2 और Tier 3 शहरा माए पनप रहा है। इनू गावाई हल्का माए काम कमाई में बढ़ावो मिल रहा है। इस आगे महिलावारी अगुवाई वाला स्टार्टअप क्षेत्रीय रूप संतुलित विकास रा खास चालक रा तौरू सामी आ रहा है। स्टार्टअप्स नौकरी धंधा रा मौका बधावण सागे ही नवाचार और वैश्विक बाजार में एक करण ने ही बधावो दे रहा है। न्यूज डेस्क को सलेहा गाजी।
0: सवाई माधोपुर जिला में पुलिस गम्योड़ा मोबाइल फोन री बरामदगी सारू खास अभियान चलार 200 बत्ता गुमशुदा मोबाइल बरामद कीना है। SP ज्येष्ठा मैत्रेय बरामद मोबाइल फोन वारा असली मालिका ने सौंप दीना। वे बतायो कि साइबर सेल और पुलिस की खास टीम तकनीक काम लेर मोबाइल बरामद कीना।
3: सवाई माधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाई माधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CIA पोर्टल पे जितने गुमशुदगी दर्ज कराई थी उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CIA पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें हमारी मुख्य भूमिका रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है सवाई माधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
0: अरे वह बात खेल कूद रही। जापान में चल रहा एशियाई खेला में बोझ उंचावन री होड़ भारोत्तोलन में भारत री मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में चांदी रो तमगो जीत लीनो है। भारत रा जय मीणा ही आज सॉफ्ट टेनिस रा एकल मुकाबला में कांसा रो तमगो जीत और इतिहास बना दीनो। निशानेबाजी री स्कीट होड़ रा महिला और पुरुष वर्ग में ही भारत ने कांसा रा तमगा मिला। अनंतजीत सिंह नरुका, मिराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल री टीम 346 अंक हासिल कर अरकांसा रोतम को जीतियो। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लोरी तिकड़ी देश सारो कांसा रो एक और तमगो हासिल कीनो। भारत हाल ताई सोनारो 1, चांदीरा 5 और कांसारा 6 तमगा समेत कुल 12 तमगा हासिल कर लीना है। प्रदेश में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुए जावन पाछे पारो ओजो चढ़वा लग गयो है। जैसलमेर में लाड़ला कुछ दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआरए दर्ज करियो जा रियो है। काल सबू बत्तो तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस न पीछियो। बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में आई दिन रे बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे करीब रिकॉर्ड करी चियो। मौसम विभाग रे मुजब जोधपुर, जयपुर, अजमेर और पिलानी समेत घनखर ठोणा तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है।

0: آخر میں خاص سماچار ایک کر پھر سن لی رہو प्रदेश में आवता पंचायत चुनाव में प्रधान जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य आरक्षण लॉटरी आज निकाली ची मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल पीपीओ जारी करने की कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस के मौके प्रदेश में नैरी नैरी थोड़ा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया और एशियाई खेलों का पांचवा दिन भारत पांच तमगा जीतिया नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदीरो तमगो जीतियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो हाणो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माई प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम वैरानी बात।

शब्द कार्यक्रम होने वाली सब बहनों ने सौराठी की रीता बहनों राम राम राम राम बहनों आ सौरानो कार्यक्रम है ने बहने आटली संख्या में बैठ देखी ने मने खूब खुशी थी रही है कि आपने आ मौसम खूब गर्मी वालो थी गयो है ने बे तीन दड़ा थे एकदम भीषण गर्मी पड़ी रही है तीक्ष्ण धूप पड़ी रही है ने आवा समय में भी आप कामकाज भी घणु है तीज त्योहार नो भी समय है फिर भी आटली संख्या में बहने सोरा ऊपर है तो आटली बहनों दीकरी खुशी भी था ने बात करवाना नो आनंद भी आवे ने आपणे सोरा ऊपर विभिन्न बैरथी की जुड़ेली चर्चा करो बैरथी की जुड़ेली से आपणे वात करा आणा कार्यक्रम में तो आज आपणे कार्यक्रम में बात करूंगा पर्यावरण संरक्षण ने सतत विकास में क्योंकि पर्यावरण नु संरक्षण करवा में बहनों ने खूब अच्छी भूमिका है इन बारे में अपने आगे चर्चा करूंगा इन बारे अपने बात करूंगा कि आना बदलता मौसम में अपने स्वास्थ्य नो हति ध्यान रखो हाथे हाथे अपने घर में पशु रखो गाय भैंस बकरी वगैरह रखो तो इन्हें अपने हूँ आहार आलवज हुए इन बारे में चर्चा करूंगा इन हाथे हाथे आज आयुर्वेद दिवस है तो आयुर्वेद दिवस नो अपने जीवन में हूँ योगदान है आ दिवस किम मनाओ इन पर चर्चा करूंगा इन हाथी पर्यावरण संरक्षण पर पर्यावरण प्रेमी श्री प्रीतिश भाई दी की अपने स्टूडियो में मौजूद है नती की बातचीत करूंगा इन हाथे हाथे एक अच्छो सो गीत हम रंगा तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास अपने सब जाना के वर्तमान समय में सबथी की बड़ी ने ज्वलंत समस्या है पर्यावरण ने संरक्षित रखवानी आपणो जे पर्यावरण है ये खूब दूषित थई गयु है घणो प्रकार प्रदूषण है अने एने कारण थी कि आ धरती नो तापमान एटलो बढ़ी रह्यो है अने जेनथी की ग्लोबल वार्मिंग थई रही है अने आपणे वर्तमान समय में देखी रह्यो कि घणी जगह जे बाढ़ आवी रही है अचानक प्राकृतिक आपदाए आवी रही एनो कारण भी छे कि खूब ज्यादा गर्मी बढ़ी रही है धरती नो तापमान खूब बढ़ी रह्यो है जेनथी कारण आपणे जे हिमालय उपर ग्लेशियर है ये पिघली एने बाद ही पिघली जाए तो इना जे हिमखंड टूटी नदी में पड़ी जाए या फिर इनथी की खूब ज्यादा जल आवी जाए खाट लगो जिनथी की नदियों में बाढ़ आवी जाए इन बाढ़ ने कारण थी कि जनजीवन खूब प्रभावित था घनी जगह खूब जनधन ने हानि भी था अवड़े से अपने देखिए थोड़ा दाड़ा पहले कि नेपाल में भीषण बाढ़ आई तो एनो कारण ई सतो कि ग्लेशियर है ई पिघली नहीं पड़ी रही ने ग्लेशियर ने पिघलवानो कारण है धरती नो तापमान बढ़वाना कई प्रकार ना कारण है एक तो आप

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: बहनों, आ सोरा ऊपर अपने प्रतिजीती की बातचीत करी ने एने कितली अच्छी तरह थी अपने समझाड़ियो कि पर्यावरण नो जे नुकसान थई रह्यो ने हुं कारणे एने बचाव पर ले अपने हुं प्रयास करी शकुं। बीजोने सतत विकास ने बात भी करी कि अपने अगली पेढ़ी उधी अगर स्वच्छ साफ सुथरी धरती अपने राखवी है तो अपने आनी दिशा में हवे कदम उठावो पड़ेगा। आ जिम्मेदारी से अपने बहने ही घर थी कि

कार्यक्रम वही रानी बात जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: खेतीबाड़ी सुन बड़ा सगला काश्तकार भयान विशाल गोड़ का गणा गणा राम राम। और आज अपने सगा प्रभु भाई थाने भी गणा गणा राम राम।
1: बिल्कुल विशाल भाई थाने और सुनवा वाला सगला अपना हेताड़ श्रोताओं ने गणे मानसु प्रभु दयाल वर्मा को भी राम राम। और देखो विशाल भाई अब जहाँ अपने मानसून है बिरखा है जी वह विदा धीरे धीरे जहाँ होगी यहाँ मानो के और सितंबर के महीने जहाँ 20-25 तारीख तक की अगर आप बात करें तो आपने राजस्थान से जो मानसून है वो लूट वाला गया भी कैसा कैसा के जहाँ भाई लोग जगह अगेती फसल ली है जहाँ बाजरा की है मूंग है मोट है तो बाकी जगह लावनी लोचनी है भी के महीने भी भाई लोग है जगह लाग रहा है। और भी जहाँ पुराना टाइम में तो कहीं तो जहाँ जगह जहाँ संकर किस्म होती को नहीं देसी चीजें होया करती तो वे जहाँ दिवाली आती बैठा था जहाँ मूंग मोट है पांच वो करता। पर अब देखो आजकल जगह वैज्ञानिक है आधुनिक जिकी तकनीक है जिको इस्तेमाल कर नई नई जिकी किस्म है ज्यादा उपज दे बड़ी वे इजाद कर ली तो विश्व कहीं है के उत्पादन भी चौको मिले और कम समय के मायने पकड़ तैयार भी हो जाए।
0: आजकल आप देखा जगह जगह अपने किसान भाई भी जैविक खेती पर भी जोर दे रहे हैं।
1: बिल्कुल जैविक खेती तो देखो अब वाला टाइम की आवश्यकता उसी बात तो करनी पड़सी। पर जिकी पुरानी जी आप खेत का मायने अगर आप खाने पीने की बात करने तो जी चिंगड़ा है कांचड़ा है आपने गुमार की जगह इस टाइम का मैंने जहाँ खाने पीने की थोड़ी सी आप बात नहीं कर लिया तो वो शुद्ध खान है ना जी आपने मायत है बडका खाया करता जहाँ वो बाजरा की जहाँ रोटी बनाता और या जहाँ मोरन है जो आज चौमासा के दिन का मैंने अड़ाव का मैंने जहाँ गाय भैंस बकरी बेच रहा था तो सिट्टा मोर जो वो मोरन खाता कच्ची चीज खाता ने तो विश्व स्वास्थ्य का मायने कई प्रकार का फायदा होता है देखो। और भी किस्सा कैसा की जहाँ मोरन ने वे सिट्टा सो भी बाजरा ने निकाला बाद में कोई हांडी में है कुलड़ी में है गालर बाद में वो सूख जाता तो कई दिन बाद में खाता तो बिको नारो देखो स्वाद हो गया करते विशाल भाई।
0: देखो सर पुरानी बात है आजकल तो देखभाल कम मिले है।
1: बिल्कुल देखभाल कम मिले लेकिन अपन आज चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जी सुखेड़ी होती जी गुआर की फली सुखा लेता टेंड सी है काचरो है बाकी ऊपर को देखो छिलको उतार भी ना तावड़ी के मैंने सुकार बाद मैंने आबावा टेम का मैंने लंबा टेम तीन भेजिया बिकी सब्जी खाया करता और गुआर की बुझी विशाल भाई जी गुआर की फलियां जो तोड़ बिक बाद बाठा के ऊपर मिर्ची बांट और बीच के मैंने खीरो रख रहे ऊपर दो तेल का टोपा गिरता जी सरसों वाला बहुत जगह यहाँ शानदार सी खुशबू है जी मायने पूरा का मैंने भी ऊपर रोटी रख देता
0: वो कोयलो पूरे धुआड़ो कर दे तो वह फलियां में और पच देखो बिन खा
1: बिन खाता देना देखो भी वो कहीं स्वाद हो जाकर
0: फलियां की भुजी जी की बहुत ही जोरदार।
1: बिल्कुल तो देखो भाई लोग भी यहाँ सुन रहे हो उसी कर देखो बात तो यहाँ पुराने टाइम की आजकल का टाबरिया जाने को नहीं पर अब बाजरा की रोटी फलियां को साग खावे देना देखो मतलब एक नारो भी को अंदाज बने तो क्यों ना बाजरा की रोटी फलियों को साग अपना गीत के माध्यम से भाई लोगों तक पूछ तो करा दें
0: करावा
1: सा सुनो सा

0: विशाल भाई
1: जी,
0: बाजरे की रोटी पोईर ओ फलियां को सागजीर, जिमन बैठी गोरडी जद बोलन लग्यो कागजी। देखो पुराना टाइम की बातें है, जद कागलो बोलतो तो देखो कोई आदमी अपना जिया खास हुआ करतो, तो भाई वो आबा को संकेत मिलतो, वो भी एक शुभ मान्यो जातो। तो गीत के माध्यम से बहुत ही मीठी चीज की लोक रचना है राजस्थान री, आपने माटी री देखो पहचान है पूगती हुई। पण अब आप कार्यक्रम ने जानकारी की तरफ ले चला, और जैविक खेती और खेती में नवाचार ई विषय पर एक महत्व जानकारी भाई लोग तक पूगती करा, और जानकारी अपने दे रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। तो क्यों ने पहले आप बातड़ी सुन लिया
1: सुना सर।
2: श्रोतावा आज आपने साथ स्टूडियो में छे प्रगतिशील

0: किसान श्याम सुंदर शर्मा। दोस्तों, लालसोट में आप खेती किसानी को काम करें छे और बहुत ही बेहतर तरीका से खेती किसानी के साथ साथ आप पशुपालन बागीचा भी आप लगा रखे जो सब्जियां की खेती भी आप करो छो और वानी की फसलों का बारे में भी आप साज आप बात करें ना। तो सबसे पहले तो श्याम सुंदर जी बहुत ही बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। आपसे यह जानबो चाहूंगा आप इतना बड़ा स्तर पर ही काम में कर रहे छो तो बाकी काश्तकारों की अपेक्षा आप कौन कौन सा नवाचार कर रहे थे और वहां से आपने कई फायदे मिले चाहे वे नवाचार खेती किसानी में हो बागवानी में हो या फिर पशुपालन में।
1: देखो, मेरा मानना ऐसा है कि मिट्टी बलवान तो किसान बलवान
0: जी।
1: आपको काम अपनी माँ पर करना है। हमारी माँ हमें उसके घर में नौ माँ रखती है और ये जो धरती माँ है हमारी 99 साल यही हमें अपने सिर पर रख के इसी पर हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमें मृदा स्वास्थ्य पर काम करना होगा। जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं आजकल मीडियाज में और अखबारों में निरंतर खबरें आती रहती हैं कि मृदा स्वास्थ्य निरंतर रूप से गिरता चला जा रहा है और उस कारण आप पिछले आंकड़े उठाइए उसमें ये निरंतर रूप से साफ चला जा रहा है। उत्पादन में हमारे यहाँ लगातार निरंतर गिरावट हो रही है और ये हमारे यहाँ ही पूरे विश्व में हो रहा है। गुणवत्ता और प्रोडक्शन रेट दोनों में ही कहीं ना कहीं हमें माइनस मिलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मृदा स्वास्थ्य पर काम करना होगा, मृदा को समझना होगा। जब हम मृदा स्वास्थ्य को अपना पाएंगे कर पाएंगे तो ही हम खेती को साकार कर पाएंगे।
0: बिल्कुल जी, आपसे बात कर रहे थे, बात कर मैं पतो लाग ही रहे कि आप नवाचार भी करो थे और साथ में हर चीज की समझ आपके पास है। तो अब आपसे मैं यह भी जानना चाहूंगी कि एक जो किसान जो है उन्हें आपका खेत में उत्पादन बढ़ावा के लिए कौन कौन सी मोटी बातें हैं जहां को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखो, आज जो हम केमिकल का इस्तेमाल हमारे खेतों में कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारे भोजन से लेकर के हमारे हर चीज में पहुंच चुका है। तो मिट्टी को बलवान जो बनाने की बात मैं कहता रहता हूँ, उस बात का मूल आधार ये है कि कहीं ना कहीं हमें जैविक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, हमारे परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। जो हमारे पुरखे काम करते हैं वो करने होंगे। अगर ये मिट्टी बचेगी तो शायद हम हमारी माँ को बचा पाएंगे, तो ही हम खाद्यान्न का उत्पादन ले पाएंगे। तो नवाचार सबसे बड़ा यही है कि हमें किस तरह से नए नए जैविक तरीकों को अपने काम में लेना है और उन जैविक तरीकों के माध्यम से हमें अपने उत्पादन को निरंतर बढ़ाना है। और खाद्यान्न की गुणवत्ता, देखो उत्पादन तो हमने बढ़ाया है लेकिन हमारे खाद्यान्न की गुणवत्ता जो है निरंतर रूप से गिरती चली गई है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपको मानव स्वास्थ्य पर निरंतर देखने मिलता है। आज बहुत छोटी उम्र के लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर गौर करके और इस बात पर ध्यान देना होगा कि मृदा का स्वास्थ्य अगर बचेगा तो उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य मिलेगा, इससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा।
0: जी श्याम सुंदर जी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात आप माँ का श्रोतावा ने बता रहे छो। अब जो कि आप सब्जी उत्पादन भी करो छो आपका खेती किसानी के अंदर, तो आपसे यही जानबो चाहूंगा का बाकी लोग जी तरह से सब्जियां को उत्पादन करे छो वाम और आप जो चीज करो छो सब्जियां के अंदर तो कौन सा नवाचार करो छो या काई भिन्नता छे कि उत्पादकता गुणवत्ता भी बढ़े और जो आप कह रहे छो भाई जो जमीन को स्वास्थ्य छे खेत की जमीन को वो भी बरकरार रहे और मानव स्वास्थ्य पे भी कोई कुप्रभाव ना पड़े।
1: देखो श्रोता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपने खेत पर चाहे सब्जियों चाहे फलों चाहे अनाज जो किसी भी रूप में उत्पादन लेता हूँ तो मेरा पूर्णतः प्रयास ये रहता है कि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का केमिकल तो इस्तेमाल हुए ही ना
0: जी।
1: और देखो, हमारे प्रकृति में एक सिद्धांत मुख्यतः मौजूद है कि जीव से जीव भोजनम, जीव ही जीव का भोजन होता है
0: जी।
1: तो हमें उन चीजों को पढ़कर समझकर ये हमें देखना है कि हम किस जीव को हमारे यहाँ बढ़ाएं, तो जो मित्र कीट और शत्रु कीट उनका हमें आकलन करके और उसी चीज को हम अगर आगे बढ़ा पाएंगे तो शायद हमारी खेती विकसित और समझदार हो पाएगी। तो मैंने अपने यहाँ यही किया है कि जो हमारे मित्र फफूंद है, मित्र कीट है, उनको हमारे यहाँ आश्रय दिया है, उनको हमने निरंतर उनकी वृद्धि की है। इस माध्यम से मेरे जो गुणवत्ता में मुझे वृद्धि मिली है। तो करना किसान को यही है, कहीं ना कहीं मित्र कीटों को आपको संरक्षण देना होगा, उन्हें बढ़ाना होगा, तो ही आप अपने खेतों में जो केमिकल दवाइयां हैं उनको तो आप बिल्कुल रोकिए। देखिए, उनको तो हमें रोकना ही है और जो हमारी लागत है उसको भी हम कम इसी प्रकार कर सकते हैं कि हम कीट प्रबंधन हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, करना होगा।
0: जी श्याम सुंदर जी, आप बात कर रहे थे की तरीका से आप नवाचार ने अपनाओ छो। अब आपसे यह भी जानबो चाहूंगा ना कि जी हाँ, काश्तकार भाई खुद को फसल को उत्पादन बढ़ावा के लिए रासायनिक कीटनाशक को रासायनिक दवाओं को अंधाधुंध प्रयोग कर रहे थे, बेशक उत्पादन बढ़ रहे थे जी हाँ बताई रहे छो, पर आप जो कह रहे छो भाई प्राकृतिक खेती जैविक खेती को कितना महत्व है और आप इस मंच का माध्यम से बाकी जो काश्तकार भाई जो कि ई तरफ रुझान कम दिखा पा रहे थे वहां का ही कहबो चावला कि ई चीज ने अपना बस उत्पादन पे कितो कई फर्क पड़े चाहे कितो कौन पड़े, विस्तार से बताओ
1: सर। देखो साहब, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जैविक खेती प्राकृतिक खेती आज की तारीख में दुष्कर कार्य है, बहुत आसान कार्य नहीं है। इस मंच से मैं ही कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर भी हम समग्र रूप से प्रयास करेंगे

0: तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। तो जरूरत है आज हमें उस कार्य को समझ करके सोच करके करने की जरूरत है। किसी भी कदम उठाने से पहले हम सोचेंगे समझेंगे तो शायद हमारा काम सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। किसान कहां गड़बड़ करता है? किसान गड़बड़ ये करता है कि वो पूर्णतः बाजार पर निर्भर हो गया है, चाहे बीज के रूप में मान लीजिए, चाहे कीटनाशक रूप में मान लीजिए, और उससे बचकर अपने विक्रय को जो अपने उत्पादित उत्पाद है उनको बेचने के लिए बाजार भी निर्भर है, तो उसको चला बाजार रहा है। ऐसा नहीं, उसे अपने ही खुद के फार्म पर इन चीजें विकसित करनी होगी, जैसे जैविक कार्ड है, जैविक अपने उर्वरक है, उनको विकसित करिए। आज पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, आप थोड़ा सा अपने जैविक कीटनाशकों को आप समझिए, उनको उनकी गुणवत्ता उनको बनाने के तरीके को समझिए। मुख्यतः मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो किसान बाजरे को 20 रुपए किलो में बाजार में बेच आता है, उसी बाजरे का बीज 600 रुपए किलो में वापस लेकर जाता है एक किलो बीज, तो किसानों के लिए बड़ा घाटे का सौदा जब हो जाता है कि जब बीज की निर्भरता उसने बाजार पर रख दी है। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस ओर आगे आना होगा, बीजों को समझना होगा किस प्रकार बीज तैयार किए जाते हैं और किस प्रकार हम बीजों से अपनी गुणवत्ता उत्पादन का को बढ़ा सकते हैं। इन दोनों तरीकों से अगर हम इसको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन को हम निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं।
1: तो अब आपसे यह जानना चाहूंगा श्याम सुंदर जी कि खेती के साथ साथ काश्तकार भाई पशुपालन ने भी एक पूरक व्यवसाय का रूप में अपना वज है, और आप भी चूंकि आपका फार्म पर पशुपालन भी करो छो, तो आपसे यह जानना चाहूंगा भाई कौन-कौन सा तो आप उन्नत तरीका अपनाओ छो पशुपालन में, और कौन-कौन सी ऐसी नस्लों का पशु आपके पास है, और कशा पशु छे जो कि आप पशुपालन के अंतर्गत आपका फार्म पर आप पाल रखे जो।
0: देखो पशुपालन भी वही इंटीग्रेटेड वाली बात है, किसी एक मुख्य का पशु को अगर भी मैं नाम लूंगा तो गलत बात होगी। पशुपालन में हमारे पास सभी प्रकार के पशु, गाय भैंसे बकरी सभी प्रकार के पशु होने चाहिए, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ किसान सब प्रकार के पशुपालन नहीं कर सकता है, लेकिन मुख्यतः जो गाय भैंसे और बकरी इन तीन को हमारे रहना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें किसी भी स्वरूप में आर्थिक लाभ भी दे जाती है, जैसे कि मेरे खेत पर भी देशी गोवंश है, कुछ अपने अच्छी नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंसे हैं और कुछ सुरेख नस्ल के बकरे और बकरियां हैं। इन तीनों का देखिए समग्र रूप से आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये खेती पर निर्भर ऐसे है कि हमारे बहुत सारे कृषि जो वो निकलते हैं अवशेष, उन अवशेषों को जैसे मान लीजिए मैंने आज मेरा अनाज उत्पादन लिया
1: जी।
0: अब जब अनाज उत्पादन लिया, जब मैंने उसे ग्रेडिंग किया तो ग्रेडिंग के पश्चात जो मेरा अनाज बच गया तो वो मेरा पशु आहार है, और जो पशु ने उस आहार को खा लिया, उस आहार को खाने के पश्चात जो उसने मलमूत्र त्याग किया वो मेरे खेत का उर्वरक है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यह भी जानना चाहूंगा सर कि आप जो पशुपालन करो जो पशुपालन में उत्पादन बढ़ावा के लिए आहार की बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका रहे छे, तो आप आपका जो पशु जवानी की प्रकार को आहार खिलाओ जो कि वहां को उत्पादन भी बढ़े और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे छे। काश्तकार भाई ने बताओ पशुपालक भाई ने ताकि वे भी अपनावे और उत्पादन बढ़ावा आपका पशुओं को।
0: देखो सबसे बड़ी एक समस्या खड़ी है आज हमारे खेतों में खरपतवार नाशक
1: जी।
0: जब से किसान ने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है उसके खेत पर बीज की जो उगने की दर है वो कम हो गई है
1: जी।
0: तो पहली बात तो ये कि जब प्रत्येक किसान के यहाँ खेतों पर उनकी मेड़ों पर इतना चारा उपलब्ध होता है कि उसे कहीं बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी मेहनत अगर कर ले जो हमारे खरपतवार है उन्हीं को काट कर यदि पशु खिला दे तो बहुत हद तक तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है
1: जी।
0: उसके पश्चात जो है हमारे यहाँ जैसे देखिए बांट के लिए भी कहीं ना कहीं किसान बाजार पर निर्भर हो गया है, जबकि बांट के रूप में किसान को मिलता है जो ग्रेडिंग के पश्चात जो खराब सड़ा गला अनाज जो बचता है मिल्स में उसी को बांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वही पशु का आहार होता है, इससे पशु स्वास्थ्य में अंतर गिरता है। लेकिन मैंने अपने यहाँ जो मेरे जितने भी अनाज है मैं सभी प्रकार का अनाज उत्पादन करता हूँ, गेहूं है, जुआ, चना, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली, उन सभी जो अवशेष मुझे मिल जाते हैं उन सभी को समग्र रूप से मिला करके और पशु आहार मैं खुद ही अपने वहां तैयार करता हूं, और उस पशु आहार से पशुओं का स्वास्थ्य नियंत्रण से बढ़िया होता है। इसके अलावा आजकल तो निपीर घास वगैरह जैसे आ चुकी है
1: जी।
0: कृषि वैज्ञानिकों ने आईसीआर ने बहुत अच्छा काम किया। देखो सर मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा कि नियंत्रण रूप से वो किसानों के साथ खड़े हैं कृषि वैज्ञानिक, वो नियंत्रण रूप से जो है नई नई किसान समस्याओं का निदान करते हैं, तो आज कई बहुवर्षीय चारा आज कई ऐसा आ गया है जो किसानों के लिए बहुत साधारण और लाभदायक है।
1: श्रोतावा कार्यक्रम में आज अपने साथ हैं प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर शर्मा, दूसरा लाल स्वरूप आप खेती किसानी को काम करे छे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपका स्वयं का जो अनुभव छे वे अपने साथ आज वे बांट रहे छे और बता रहे छे की तरह से खेती किसानी में उन्नति करी जा सके छे, क्या उत्पादन बढ़ाए जा सके छे और कौन कौन सी मुख्य बात छे जाको ध्यान रखना चाहिए। चूंकि आप किसान छो तो यही जानना चाहूंगा अब कि मोटो अनाज कायम हुए छे।
0: बहुत अच्छा सवाल है कि लोग मोटा अनाज जानते ही नहीं कि मोटा अनाज है क्या। देखो मोटे अनाज मुख्यतः जो आता है हमारा ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जौ है, लघु धान है, कुटकी, ये अनाज हमारे मुख्यतः मोटे अनाज है। लेकिन हमारे आसपास में जौ, बाजरा, मक्की खूब उपलब्ध होता है, आराम से होता है और हमारे जलवायु आराम से प्रभावित होता है।
1: श्याम सुंदर जी, आप बताया भाई मोटो अनाज कहीं हुआ है। अब आपसे यह

0: ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕੋ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕੋ ਅੱਛੇ ਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ
1: ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕੇ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਨ ਇਲਾਕੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਅਲਪ ਮਾਤਰਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਿਊਨਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਨ ਇਲਾਕੋ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਉਗਾ ਜਾਤਾ ਹੈ
0: ਜੀ
1: मोटा अनाज पहली बात तो ये कि मानसून की फसलों में खरीफ की फसलों में आता है तो मुख्यतः तो जो हमारे जो कम पानी वाले इलाके हैं उनमें से उगाया जाता है जो सूखे इलाके हैं जो सूखा सेशन इलाके हैं उनमें उगाया जाता है तो कुल मिला के ये है कि राजस्थान जो है राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है मोटे अनाज के लिए बहुत ही अनुकूल है मोटे अनाज का छत पर ले सकते हैं
0: जी अब थोड़ी सी जानकारी अभी चावला कि मोटा अनाज में उपलब्ध जो पोषक तत्व हो चाहे कुण सा हो चाहे की कर अपने स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो चाहिए बताओ सर
1: देखिए मोटा अनाज खाद्यान्न के रूप में आज बहुत अच्छा एक आयाम है कि आज अगर के मोटे अनाज को हम अपनाते हैं खाद्यान्न के रूप में तो हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं मुख्यतः में जो पोषक तत्व मिलते हैं मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ पर 100 ग्राम में लगभग 11.6 ग्राम तो हमारे प्रोटीन मिलता है एक मोटा अनाज से लगभग 67.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है 8 मिलीग्राम से लोह तत्व होता है और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है जो कि आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इसमें जो है अपने लोह तत्व जो होता है आपको पता है जैसा कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है
0: जी
1: और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है जिससे कि हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती मिलती है तो इस प्रकार से देखा जाए तो मुख्यतः हमारे शरीर को मिलने वाले सभी पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है
0: अब आपसे यह जानबो चावला जी आप बात ही कर रहे हैं कि मोटा अनाज की तो मोटा अनाज को जो जैविक उत्पादन से उनका बारे में मैं श्रोता ने बताओ भाई कितो महत्व है
1: देखो जैविक किसानों तो जैविक बोलना बनता भी है और मोटा अनाज जो है वो बहुत आसानी से जैविक तरीके से उगाया जाता है
0: अच्छा
1: क्योंकि मोटे अनाजों में बहुत समस्याएं नहीं होती हैं आसानी से उगने वाले हमारे यहाँ हमारी जलवायु में आसानी से मोटा अनाज उग जाता है तो जैविक तरीके से इसमें आसानी से उगाया जाता है कुछ जैसे कि कई प्रकार के कीट प्रबंधन है उसमें अपने को जैसे नीम का काढ़ा है इसका इस्तेमाल किया जाता है खाद के रूप में आप अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में अगर गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो इसके फसल के अवशेष बचते हैं
0: जी
1: जैसे बाजरे के बूंडे बाजरे को जब हम थ्रेसिंग करते हैं उसके बाद बूंडे बचते हैं तो अगर जो सड़क लगाकर वेस्ट डी गंबर सड़क लगाकर उसको फर्टिलाइजर बनाकर काम लेते हैं तो वो उर्वरक के रूप में काम करता है इसी प्रकार मक्का को जब मक्का को हम प्रोसेस करते हैं तो उसका जो अंदर का जो भुट्टा निकलता है सफेद रंग का उसको भी हम कहीं ना सड़क लगाकर के हमारे खेतों में उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है और जो मोटे अनाज की जो फसलें होती हैं उनमें चारा भी अच्छी मात्रा निकलता है तो पशु आहार का जो गोबर भी अच्छी मात्रा में काम ले सकते हैं तो उर्वरक के रूप में भी इसको आसानी से हम काम लिया जाता है तो देश भी कम नहीं है और आज तो विश्व के दरवाजे आज इतने परिवहन साधन उपलब्ध हो चुके हैं बाजारों में कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है जरूरत है बाजार को समझने की उसके अनुसार उत्पाद तैयार करने की और लोगों तक पहुंचाने की
0: जी
1: इसके अलावा जो विश्व स्तर पर भी आज मोटा अनाज को बड़े व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है सबसे बड़ी बात है कि हमारे जलवायु में अच्छे से पैदा होता है ठंडे प्रदेश जलवायु में इसका उत्पादन बहुत कम होता है
0: जी
1: होता ही नहीं है तो इससे हम कहेंगे कि हमारे लोगों को हमारे किसानों को अच्छा बाजार मिलेगा उत्पादन मिलेगा तो जैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हमें आज उपलब्ध कराया जा रहा है राष्ट्रीय बाजार में कहेंगे हमारे को प्रचार प्रसार मिल रहा है
0: श्याम सुंदर शर्मा प्रगतिशील किसान छे दोसा लालसोट में खेती किसानी को काम करे छे आपने स्टूडियो में आया और इतना बेहतर तरीका से आपने बताया कि एक प्रगतिशील किसान छे वो की तरीका से पशुपालन वानिकी अनाज सब्जियां या सब में बेहतर उत्पादन ले सके जे और उम्मीद करूं छू इस कार्यक्रम का माध्यम से आप भी बहुत सारी प्रेरणा वहां से लिया होना और आगे आपकी जो खेती किसानी से उन्हें भी आप यहाँ की जी तरक्की करोना इतनी बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी दे बताएं श्याम सुंदर शर्मा जी आपको खूब खूब आभार
2: और खूब खूब धन्यवाद आपको भी आशा वर्ण करे बहुत ही चौकी सी जानकारी भाई लोगों तक पूर्ति करवाई और विशाल भाई अब अपना धन्यवाद देवता थका लोक रचना पूर्ति करवा दे
3: सुनो सर

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात के 8 बज रहे हैं और अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना लीडर फिल्म का ये गीत। बोल थे शकील बदायूनी के और संगीत था नौशाद का।

अमर प्रेम फिल्म का आपने अभी सुना ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

हिमालय की गोद फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत मुकेश की आवाज में, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

उमराव जान फिल्म का भी आपने सुना है गीत तलत अजीज की आवाज में, बोल थे शारियार के और संगीत था खयाम का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। रात के 8:30 होने को है। अब से आप थोड़ी देर में सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और उर्दू में समाचार। साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में मैं आप सभी का श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का ये सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स

0: हेडलाइंस पर, एशियाई खेलों के भारोत्तोलन में 28 साल का सूखा खत्म, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता।
1: रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया, सेमीफाइनल मुकाबले में चीन से मिली हार।
1: भवतेज सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की पुरुष स्कीट में कांस्य पदक जीता।
0: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारोत्तोलन से, जहां मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम एक पदक कर दिया है। एशियाई खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 28 साल का सूखा समाप्त करते हुए रजत पदक जीत लिया है। यह भारत का भारोत्तोलन में 1998 के बाद पहला पदक है।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 198 किलोग्राम का भार उठाते हुए एशियन गेम्स में अपना पहला मेडल जीता। पिछले संस्करण में चौथे स्थान पर रही मीराबाई ने स्नैच राउंड के अपने पहले प्रयास में 83 किलोग्राम का वजन उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में वह 85 किलोग्राम का भार उठाने में कामयाब रही। तीसरे प्रयास में मीराबाई ने 87 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क राउंड के पहले प्रयास में 107 किलो का भार उठाया। वहीं दूसरी कोशिश में वह 111 किलो का वजन उठाने में भी सफल रही। वहीं नॉर्थ कोरिया की खिलाड़ी री सोंगम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1998 में कर्णम मलेश्वरी ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में आखिरी मेडल जीता था। इसके बाद से कोई भी खिलाड़ी एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल नहीं ला सका था। मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में अपने मेडल का सूखा भी खत्म कर दिया है। मीराबाई इससे पहले ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी है। फरहतनाज, स्पोर्ट्स कैन।
1: बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत। मीराबाई ने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में और अन्य कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे, लेकिन अपने करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल, विशेष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब बात वुशु पर करते हैं विशेष।
1: जी हां प्रशांत, और भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु के सांडा के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में रोशिबीना ने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंत्यास को 2-0 से हराया। अब रोशिबीना कल चीन की झांग शियाओ से स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। सुनते हैं कैसा रहा उनका सफर।
4: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। रोशिबीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को हराया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मकाओ की चू मैन सिन को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद वह सीधे गोल्ड मेडल के मुकाबले में पहुंच गई हैं। रोशिबीना के लिए यह एशियन गेम्स में लगातार 3रा पदक होगा। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में कांस्य और 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। रोशिबीना की नज़र अब अपने पहले एशियन गेम्स गोल्ड पर होगी। अगर वह फाइनल जीतती है तो वुशु में भारत के लिए एशियन गेम्स में यह पहला गोल्ड मेडल होगा। वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो 56 किलोग्राम वर्ग में भारत के आर्यन को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के साइदुल्लो अब्दू राशितोव से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और भारत का अभियान इस वर्ग में समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: बेहतरीन प्रदर्शन किया है रोशिबीना ने आज सेमीफाइनल में और कल स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेगी। सभी प्रशंसकों की निगाहें उनका मुकाबला जो चीन की झांग शियाओ से है उस पर होगा, जहां सबकी उम्मीदें उन पर टिकी होगी कि वे स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाएं। बैडमिंटन कोर्ट की ओर, एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज

0: चीन के खिलाफ भारत को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
1: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उन्हें जीत में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। इस हार के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। यह दूसरा मौका है जब भारत ने एशियन गेम्स में बैडमिंटन में पोडियम पर जगह बनाई है। मुकाबले की शुरुआत में लक्ष्य सेन पूर्व विश्व चैंपियन श्री यूपी से 16-12, 18-21 से हार गए। इसके बाद सात्विक और चिराग ने यांग वेकेंग और वांग चांग के खिलाफ 21-11, 22-20 से जीत हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। तीसरे गेम में आयुष शेट्टी को ली शिफेंग से 19-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। चौथे और निर्णायक मुकाबले में हे जी टिंग और लियू ई ने भारतीय जोड़ी एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर 21-16, 17-21, 21-9 से जीत दर्ज की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: कांस्य पदक जीत लिया है भारतीय टीम ने, बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में। आज किन खिलाड़ियों ने कैसा किया प्रदर्शन विशेष?
2: प्रशांत, अगर आज के प्रदर्शन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने पहला मुकाबला खेला जहां उनको हार का सामना करना पड़ा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से, लेकिन उसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को वापसी कराई मुकाबले में, लेकिन उसके बाद आयुष शेट्टी और एमआर अर्जुन और हंसा करुणन की जोड़ी जो है वो हार गई, जिसके कारण से भारत का सफर जो है वो खत्म हो गया।
0: भारत का बैडमिंटन सफर जरूर खत्म हो गया, लेकिन एक पदक उन्होंने देश के नाम कर दिया है।
2: बात करते हैं स्कीट की। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भवतेक सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की तिकड़ी ने यह पदक देश के लिए जीता है। भारत की स्कीट टीम ने फाइनल में कुल 346 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। कुवैत ने 348 के स्कोर के साथ रजत, जबकि कतर ने 353 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
0: वहीं विशेष, अनंतजीत ने इस स्पर्धा के व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारत की महिला स्की टीम ने भी देश को इसी स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था। परिनाज धालीवाल, रजिया ढिल्लो और महेश्वरी चौहान ने कुल 331 का स्कोर करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
2: जी हां प्रशांत, वहीं मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में मेडल लाने से चूक गई। मनु 181.1 के स्कोर के साथ फाइनल मुकाबले में पांचवें स्थान पर रही। मनु अपने प्रदर्शन से खुद निराश नजर आई। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में भी मनु, ईशा और सुरुचि की तिकड़ी मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गई। भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही।
0: क्योंकि मनु भाकर से सभी को उम्मीदें थी, हालांकि बहुत ही कम अंतर से वो पदक जीतने से रह गई। और अब बात करते हैं सॉफ्ट टेनिस पर। सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें जापान के ताकुया कुरुसोका से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।
1: सेमीफाइनल में हार के बावजूद जय मीणा कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। जय ने क्वार्टर फाइनल में शेरविन नोगोइट के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए एशियन गेम्स के सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल पक्का किया था। सेमीफाइनल में जय कोरोसाका से हार गए और ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना सफर समाप्त किया। जय के सफर की बात करें तो 14 साल की उम्र में ही उन्होंने जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। मीणा ने 2022 में गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में पुरुष सिंगल्स वर्ग का गोल्ड मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2025 में वे पुरुष सिंगल्स के नेशनल चैंपियन बने। एशियन गेम्स 2022 में जय पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। 2024 में मीणा और आध्या तिवारी की जोड़ी ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत को इस टूर्नामेंट का पहला मेडल दिलाकर इतिहास रचा था। इसके बाद 2025 में उन्होंने एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचकर उन्होंने मेडल अपने नाम किया और इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। जय मीणा का तीसरा एशियाई खेल है। इससे पहले भी वे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 और होंगजो एशियन गेम्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, अलग अलग गेम में जो कि इतने प्रचलित नहीं उसमें भी पदक आ रहे हैं। सॉफ्ट टेनिस हो, सेपक टैक्रो जैसे नए नए जो उभरते खेल हैं उसमें भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए पदक भी ला रहा है।
2: प्रशांत, और अब बात करते हैं स्क्वॉश की, जहां भारत ने शानदार आगाज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अभय सिंह, वीर चोटरानी और

0: अन्वी खन्ना ने अपने शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। इन खिलाड़ियों में दूसरे सीड अभय का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा, जिन्होंने थाईलैंड के अर्काडेक अकारा हिरुन्या को 11-1, 11-2, 11-2 से हराया।
1: विशेष अगर वीर चोटरानी की भी बात करें तो वो भी बिना कोई गेम हारे अगले दौर में पहुंचे हैं। हालांकि श्रीलंका के शामिल वकील के खिलाफ उन्हें शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आखिरकार भारतीय खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 32 में 11-8, 11-3, 11-3 से जीत दर्ज की। तन्वी खन्ना ने साउथ कोरिया की दामी किम को 11-5, 11-7, 11-5 से पराजित किया।
0: और प्रशांत, इन नतीजों के साथ भारत के तीन खिलाड़ी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब सभी की निगाहें अनाहत सिंह पर होंगी, जिनका अभियान कल से शुरू होगा। 17वीं रैंकिंग वाली भारत की शीर्ष खिलाड़ी अनाहत अपने शुरुआती मैच में सिंगापुर की ओ योंग वाई लिन का सामना करेंगी।
1: और अब बात मुक्केबाजी पर। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। अपने पहले एशियन गेम्स में अंकुश ने आज बहरीन के हमसा बोगेल को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर का मुकाबला तजाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव से होगा।
0: 21 वर्षीय बॉक्सर ने राउंड ऑफ 32 में ब्रुनोई के वोगोल पर 3-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अगले दौर में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पंघाल ने पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में रजत पदक जीता था और अब वे नागोया में मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है। प्रशांत,
1: लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है मुक्केबाजों का। हाल के दिनों में भी उन्होंने कई पदक देश के नाम किए थे और इस प्रतियोगिता में भी सभी प्रशंसकों की निगाहें उन पर होगी कि वे पदक जीते और देश का मान बढ़ाएं। और अब बात हॉकी पर। भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज पूल बी के मैच में भारत ने थाईलैंड को 20-1 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में अजेय रिकॉर्ड बरकरार है और टीम पूल स्टैंडिंग में मजबूती से शीर्ष पर बनी हुई है। ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। विशेष, भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को जापान से होगा।
0: और इससे पहले प्रशांत, भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 और फिर इंडोनेशिया को 17-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। थाईलैंड के खिलाफ दीपिका का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैच में कुल 9 गोल दागे। फॉरवर्ड और ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने अपने सभी 9 गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि ऋतुजा पिसल ने हैट्रिक पूरी की। भारत की नजर हांगझोउ एशियन गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन करने पर है। टीम 1982 के बाद महिला हॉकी में अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रही है।
1: और अब बात क्रिकेट पर। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी वुमेन्स टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन की पारी खेली थी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे और फाइनल मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 48 रन की पारी खेली थी। और अब भारतीय पुरुष टीम भी तैयार है एशियन गेम्स में पदक लाने के लिए। महिलाओं ने स्वर्ण पदक, पहला पदक जिताया है, देश को दिया है। और टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं विशेष, जो भारत को पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे?
0: प्रशांत, भारतीय टीम अभी टी20 में विश्व चैंपियन है और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा कि वो भारतीय टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे कई खिलाड़ी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीदों को पक्का करने के लिए खेले।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ उम्मीद होगा प्रशंसकों को भी। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.ar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विशेष को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

0: को करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदार। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
4: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ, तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
5: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवन संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: आईएमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर

0: जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांडा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
2: एशियाई खेलों में रशोदीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
3: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुए थे तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
2: ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाम धानीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवदेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पेश है कार्यक्रम आपके लिए।

कंगना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म से ये गाना सुन रहे हैं जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसे दे एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जन्नत फिल्म से केके की आवाज में सईद कादरी के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की पुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्रामकार दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध

23 सितंबर 1943 को जन्मी अभिनेत्री तनुजा का शुमार सिनेमा की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में होता है। तनुजा की मां शोभना समर्थ, बहन नूतन तो अपने दौर की सुविख्यात अभिनेत्रियां रही ही, तनुजा की बड़ी बेटी काजोल भी आज की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल है। उनकी छोटी बेटी तनिषा का रुझान भी फिल्मों में है। 1950 में बेटी नूतन के लिए शोभना समर्थ ने निर्माण किया था फिल्म हमारी बेटी का, जिसमें तनुजा ने बाल कलाकार के रूप में काम किया। लेकिन फिल्म हमारी बेटी शोभना समर्थ की दोनों बेटियों के लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाई। 1960 में शोभना समर्थ ने एक और फिल्म बनाई छबीली, जिससे तनुजा ने बतौर अभिनेत्री औपचारिक शुरुआत की अभिनय की। फिल्म छबीली के निर्माण से थोड़ा पहले ही तनुजा विदेश से लौटी थी इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा का कोर्स करके। तनुजा को हिंदी की तब काम चलाऊ जानकारी ही थी, लेकिन अपनी लगन से तनुजा ने हिंदी पर भी अच्छा खासा अधिकार पा लिया। एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में उनकी चर्चित फिल्म थी हमारी याद आएगी।

0: फिल्म हमारी अदायगी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 60 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री तनुजा का करियर बन ही रहा था। शुरुआत की ज्यादातर भूमिकाएं सपोर्टिंग रोल की थीं। इस तरह के रोल उन्होंने जिन फिल्मों में किए वो थीं नई रोशनी, जुआरी, ज्वेल थीफ और सपनों का सौदागर। फिल्म दो दुनी चार में तनुजा ने किशोर कुमार के साथ बखूबी निभाई अपनी भूमिका।
1: बूंद बराबर बोना सा फन्नाकत लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से खुशियों पर उठा, पेट से आया, नाक पकड़ कर खुला फैला, फन फैला कर सर पे चढ़ गया।
2: क्या
1: गुस्सा है, गुस्सा।

1969 में तनुजा जितेंद्र के साथ आई जीने की राह में, और इस फिल्म ने तनुजा को स्टारडम तक पहुंचाने की राह बनाई।

फिल्म पैसा या प्यार में अपनी भूमिका के लिए तनुजा को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड।

पैसा या प्यार फिल्म के बाद तनुजा को कई फिल्मों के ऑफर्स मिले। 1970 में उन्होंने पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पवित्र पापी में निभाई यादगार भूमिका।

उस दौर के हार्ट थ्रॉब राजेश खन्ना के साथ 1972 में तनुजा ने एक और बेहतरीन फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। फिल्म थी मेरे जीवन साथी।

1972 में तनुजा के जीवन साथी बने शोमू मुखर्जी। उनकी फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में तनुजा ने अभिनय किया था। 5 अगस्त 1974 को उनकी जिंदगी में आई बेटी काजोल। राजेश खन्ना के साथ तनुजा ने फिल्म हम शक्ल और हाथी मेरे साथी में भी काम किया। हाथी मेरे साथी तनुजा की सुपरहिट फिल्म रही।

बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा।

हिंदी के अलावा बांग्ला सिनेमा में भी तनुजा ने अपनी उल्लेखनीय पहचान बनाई। उत्तम कुमार, चिरंजीत, रॉबी घोष, सौमित्र चैटर्जी और विक्टर बैनर्जी जैसे अग्रणी अभिनेताओं के साथ तनुजा ने बांग्ला फिल्मों में भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। फिल्म अनुभव तनुजा की एक और चर्चित फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था बासु भट्टाचार्य ने। फिल्म अनुभव को तनुजा जी के फ्लैट में ही शूट किया गया था। तीन पात्रों की इस कहानी में तनुजा के अलावा सुप्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार और जाने माने रंगकर्मी दिनेश ठाकुर ने काम किया था। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी भूमिका को बहुत असरदार ढंग से निभाया।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेलुलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार।

0: शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुन ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also have great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Rashi Benadevi secured her place in the women's 60 kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jemina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Mina's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashwani.
3: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी आ रहे हैं, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में जीता जीता मैच आ रहे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुबह सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट।
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीमी स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया, और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारूका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरूका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें

0: ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव खेलेंगे।
1: टाइम नाउ फॉर ऑल दी एक्शन फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट फ्रॉम टेबल टेनिस। साक्षी मानवाल हैज अ रिपोर्ट।
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kwon Toh and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manusha and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन परमा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन परमा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नवरेम और आशिता स्टेलन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sathvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Cheng, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the Kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी

0: जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijita Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं। यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, H in Nagoya, 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: For India to stay in canoe competition, they had to do well today. Sakshi Manwal tells us how the Indian contingent fared.
2: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final aim. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Mucha Singh Oinam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadil, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear.

0: what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
1: फुर्ती संतुलन और किक के खेल सेपेक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगू का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा

0: Cash Money.
1: Good evening, Delhi, and good evening, India. Yes, this is 102.6.
2: FM band 101.3 megahertz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है. रात के 10:20 हुए हैं. आई श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं सदाबहार नगमों के सफर पर. सफर में पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म घर से, आवाज किशोर कुमार की. गीत में बोल हैं गुलजार की और धुन है आरडी बर्मन की.

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म इजाजत से आशा भोसले की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर के बोल हैं और खयाम का संगीत।

आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म उमरावजान से। गीत में बोल हैं शहरयार के, मौसीकी है खयाम की और आवाज आशा भोसले की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सदमा से यशुदास की आवाज में।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब आपको आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनवाते हैं फिल्म जूली से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन राजेश रोशन की।

इसी के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार

0: औजार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम्ब वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसनेवटियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:53 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।